0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: तू ही हमारा कारसाज है, तू हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है।
2: वक्तु

0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 247365
2: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 247/365

0: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ। इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी। प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर जहीर हुसैन चाचड़, कंसल्टेंट पेरियोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट। बुध 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा।
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन FM 247 365।
2: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है। और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराहकुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम PTA।

0: 6:08 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम
4: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली
5: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है
6: खैर ही खैर है HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है
5: HBL ज़रई बैंक की वजह से
6: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला
5: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा
7: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें
8: शराइत ज़वाबत लागू है
9: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम पिछले के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
10: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा
11: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
12: शौकत खानम कराची की तकदीर
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
14: 100 FM
4: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली
5: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है
6: खैर ही खैर है HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है
5: HBL ज़रई बैंक की वजह से
6: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला
5: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा
7: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म ज़रई आलात और मवेशी خوشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
8: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
14: This program is brought to you by HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL.
15: And شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
16: And سرسبز نائٹرو فورس کو لگا اور جیت تاجا.
17: And فینکس لگا اور بھول جا. فینکس لگا اور بھول جا.
18: And try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
19: FM 100.
20: 31 سال FM 100. آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
21: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.
22: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. چیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں. چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے چیز کیش ہے نا.

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
4: ओ खैर है बरकतें बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
5: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
4: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
5: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
4: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
6: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें.
7: शराइत ज़वाबित लागू है.
8: 100 FM.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: This program is brought to you by
1: HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL.
9: And शौकत खानम कराची की तकलीफ.
10: And सरसब्ज नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा.
11: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
12: And try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
1: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki taqdeer.
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
4: 100 FM.
5: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
6: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
7: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
6: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
6: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
8: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
9: शराय तो जवाबत लागू है.
4: 100 FM.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
10: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ. इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत, सेहतमंद जिंदगी. प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर जहीर हुसैन चाचर, कंसल्टेंट पेरियोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट. बुध 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर. डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL
2: एंड शौकत खानम कराची की तकदीर
11: एंड सर सब नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा
0: एंड
12: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
13: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली.
14: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा. तो आओ हेड करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान. अजमी इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान.
15: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
16: FM 247365.
17: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
18: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
17: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
19: मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
18: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
17: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं.
19: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी. सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते. अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
17: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
19: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए.
17: आइए वेट से आगे का सोचें.
15: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
20: टोमा के टोमा के टोमा टोमा के टोमा ते केरो मूचो.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Vahan HBL.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं
3: बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
5: 100 FM
6: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली
7: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है
8: खैर है HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है
7: HBL ज़रई बैंक की वजह से
8: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा
9: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें
10: शराइत और ज़वाबित लागू है
11: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
12: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
13: शौकत खानम कराची की तकदीर
14: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
13: एंड शौकत खानम कराची की तकदीर
15: एंड सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
16: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
11: And try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
17: FM247365.
18: Let's celebrate
19: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
17: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
5: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ.
4: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा.
5: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
6: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
7: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM 247365.
9: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G.

0: FM 100 traffic update.
1: ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फरोख इजाज़। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफएम 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक शेरशाह चौरंगी से वो ट्रैफिक जो इस माड़ी को रोड की जानी जा रहा है, उस पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है और गाड़ियां स्लो मूव कर रही है। इसके साथ साथ वो तमाम ट्रैफिक जो इस वक्त लियाकताबाद डाखाने से जा रहा है, लियाकताबाद 10 नंबर और उससे आगे की जानी सड़क टूट फूट का शिकार होने की वजह से ट्रैफिक स्लो मूव कर रहा है। लिहाजा वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद देर रहने के लिए सुनते रहिए FM 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनाटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है. इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं. बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं. खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: वीकली लकी ड्रॉ विनर कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
5: 100 FM.
6: झूमे प्यार से हर वक्त डली डली.
7: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
8: खैर ही खैर है, HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
7: HBL जरिए बैंक की वजह से?
8: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरिए कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
9: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें.
10: शराइत जवाबत लागू है.
11: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
12: शौकत खानम कराची की तकदीर.
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
14: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G.
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
5: एंड
12: शौकत खानम कराची की तकदीर
5: एंड
7: सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा
5: एंड
15: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
5: एंड
3: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
2: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
5: FM 247-365.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
3: Shaukat Khanum, Karachi ki takdeer.
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
5: 100 FM.
6: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
7: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
8: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
7: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
8: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
8: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें.
9: शरायत ज़वाबत लागू है.
5: 100 FM.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
10: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL.
3: एंड
11: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
3: एंड
12: सरसब नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा.
3: एंड
1: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
3: एंड
13: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
14: खवातीनो हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में साहित कर चुका होता है. वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा ओढ़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है. मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस सवल का ताना बाना बुरी सोबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है. घर दिल से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है. खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके. हमारा आज़्म एक गांव, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान.
15: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
16: FM 247365.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: FM 247 365

0: your location for maximum music.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
3: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
6: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
7: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
8: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
9: facebook.com/fm247365 fm247365

0: 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBO Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBO
1: 100 FM.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO Freedom Account.
2: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ. इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत, सेहतमंद जिंदगी. प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर जहीर हुसैन चाचर, कंसल्टेंट पेरियोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट. बुध 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर. डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं. शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे. इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें. अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं. याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा. लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें.
7: اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں. اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں. اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ڈی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے. اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں. ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے. اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں. شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے پی ڈی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ڈی اے.
8: مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
9: FM 24/7/365

0: 11 AM. The Time Check is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry Farm, Fish Farm, Zarayalat aur Mavishyo ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर तीन महीने के बाद यह आसान टीका लो। एक आसान और सेफ मन अमल का तरीका है। ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर तीन महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
2: मजीद मालूम के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320

0: 11:15 a.m. This town check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत नहीं कर रहे, होशियार रहें, मुहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। रेडियो हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत ए पाकिस्तान
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 247 365

0: your location for maximum music.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमूई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जनरल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: वीकली लकी ड्रॉ विनर कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
5: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ मन अमल का तरीका है। ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
6: मजीद मालूम के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रब्ता कर सकते हैं।
7: facebook.com/fm247365 fm247365

0: Weeks, 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga
1: aur bhul ja. Oral health ki baat, Platinum Pharma ke saath. Is program ka mauzu hoga, Sehatmand Daant, Sehatmand Zindagi. Program mein hamare mehman honge, Dr. Zaheer Hussain Chachar, Consultant Periodontist and Implantologist. Budh 2 baje, sirf FM 100 Pakistan par. Dental Room by Platinum Pharma.
2: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन साफिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाइल होनी चाहिए। याद रखिए, अगर आपके जहर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन साफिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाए। शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए मात्रा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मिल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बर वक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसल्लुत को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि ये आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम लीजिए।

0: your location for maximum music. It's 12 noon. The sound check is brought to you by HPSL Banking ke paas hai. Poultry Farm, Fish Farm, Zara Yalat aur Maveshiyo ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर तीन महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ मन अमल का तरीका है। ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर तीन महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
2: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
3: FM247365 FM247365 FM100
4: 31 साल FM100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

the lunchtime special on the big one. FM 100.

यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और बाकायदगी से आगाज जो है वो होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ। तो जी हाँ, बाकायदगी से आगाज हो चुका है। अब आपको बताते हैं तरीका कार कि कैसे आपने भी लगानी है हमारे प्रोग्राम में हाजिरी। तो आप हमें 3636 पे मैसेज कर सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। साथ ही साथ आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हो चुका है स्टेटस अपडेट। और आज का भाई एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है जिस पर आज गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपको एक चीज बिल्कुल फ्री मिल सकती हो तो आप क्या लेना चाहेंगे? अगर आपको एक चीज फ्री में लेने का मौका मिले, यानी कि आपको ये चीज फॉर एवर फ्री मिल जाए, तो व्हाट इट वुड बी, वो क्या चीज होगी जो आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल फ्री में मिले? क्योंकि आजकल कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको फ्री में मिल सकती है। एवरीथिंग यू हैव टू बाय, एवरीथिंग एंड यू हैव टू पे फॉर दैट। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको फ्री में मिले, और महंगाई भी बहुत ज्यादा है। तो इसमें अगर आपको मौका मिलता है कि कोई चीज आपको फ्री मिले तो आप वो क्या लेना चाहेंगे? इस पर सबकी अपनी अपनी राय होगी। बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें 3636 पर मैसेज करके बता सकते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल फ्री में मिले। तो सवाल पूछने हैं तो आपको देते हैं सोचने का मौका। सोचें और हमें बताएं कि क्या चीज आप चाहते हैं बिल्कुल फ्री, क्योंकि हम कर रहे हैं आपके मैसेजेस का इंतजार जानने के लिए कि भाई ऐसी क्या चीज है जो मेरे लिसनर्स चाह रहे हैं कि बिल्कुल फ्री में जो है ना वो उस चीज का फायदा उठाएं। तो वो क्या है हमें बताएं।

0: जरा सा जज्बाती है ये दिल। अच्छा बहुत सारे लोग भी जज्बाती फिरते हैं जो बहुत सारी चीजें बहुत इजीली कूलली कामली हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा जज्बाती होते हैं कि सिचुएशन में ना कोई भी सिचुएशन हो, मतलब कूल सिचुएशन हो या थोड़ी सी, लेकिन बहुत सारे लोग बड़े हाइपर होते हैं लाइक वेरी जज्बाती। क्योंकि हमारे लिसनर्स में भी कोई जज्बाती शज्बाती है या नहीं? क्योंकि जज्बाती लोगों में से ना आप बात करने से पहले उन्हें कह रहे होते हैं अरे रिलैक्स हो जाओ, अरे कोई मसला नहीं है, हो जाएगा हल। क्योंकि जज्बाती लोगों को अक्सर अवकार गुस्सा भी बहुत आता है और किसी भी चीज को लेकर वो बड़े जज्बाती हो जाते हैं कि यार ये मैं कर लूंगा, ये वो कर लूंगा, भले उन्हें बेचारों को आता हो या नहीं आता हो, लेकिन जज्बाती बड़े हो जाते हैं। तो ये बात मुझे क्यों याद है, हाँ थोड़ा सा जज्बाती है ये दिल से, ये बात याद आई मुझे, दिल जज्बाती है या पूरे के पूरे जज्बाती हैं, ये हमें बताएं कि कितने जज्बाती हैं आप खुद। फिलहाल तो हम चलते हैं एक अदद ब्रेक की जाने, क्योंकि ब्रेक भी आ रहे हैं, ट्रैक भी चल रहे हैं और आप लोगों से गुफ्तगु का सिलसिला भी हमारा जारी है। तो भाई जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमें 3636 पर मैसेज करें या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मैसेज कर हमें जरूर बताएं कि अगर आपको कोई चीज बिल्कुल फ्री मिले तो वो आप क्या लेना चाहेंगे। हम इंतजार करें आपके मैसेज का, तो करें मैसेज और बताएं हमें।
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनाटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
3: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
5: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
6: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
7: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
8: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

यस माय फ्रेंड्स, तो आई एम बैक। और भाई सवाल हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए लोगों की दिलचस्पी भी काफी ज्यादा जाहिर हो रही है। तो भाई हमने पूछा था कि अगर आपको एक चीज बिल्कुल फ्री मिले तो आप क्या लेना चाहेंगे। 3636 पे मैसेज करें, आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। तो भाई हमें मोहम्मद असलम मैसेज करते हैं, कल भी इनका मैसेज आया था, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप भी एक सॉन्ग है जो FM पर बैक टू बैक म्यूजिक में आता है, लेकिन मैंने बहुत सर्च किया पर मुझे नहीं मिला, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो हम आपकी हेल्प तो करेंगे, लेकिन आप बताएं तो वो कौन सा ट्रैक है, उसके कोई आगे पीछे के लिरिक्स या कुछ और, तो हम आपको जरूर हेल्प आउट करेंगे। कहते हैं आप भी, आपका शो रोज सुनता हूं लेकिन मैसेज नहीं करता हूं, शो बहुत अच्छा है आपका। अगर शो अच्छा है तो यार आप मैसेज क्यों नहीं करते, इतनी कंजूसी क्यों करते हैं आप मैसेज करने में भाई। चलें जी, तो मोहम्मद असलम का मैसेज हमने शामिल कर लिया है, और उसी के साथ साथ जो दीगर मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं उसे भी हम शामिल करेंगे। भाई लुकपल कहती है, मैं तो पूरी जज्बाती हूं लेकिन पहले इतना गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अब बहुत आने लगा है। ओहो, क्यों आने लगा है भाई इतना ज्यादा गुस्सा, कौन कर रहा है आपको तंग जो आपको दिला रहा है इतना ज्यादा गुस्सा, कि आपकी नेचर चेंज हो गई और गुस्सा शदीद आने लगा है। और रफी खान मैसेज करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो कैसी हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं। कहते हैं मैं गुड, ऑफिस से सुन रहे हैं। कहते हैं दिन भी अच्छा गुजर रहा है, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। कहते हैं आपके इस खूबसूरत शो में शामिल होकर दिल बाग बाग हो जाता है। अरे वाह भाई, ये तो बेस्ट हो जाता है कि आपका दिल बाग बाग हो जाता है। कहते हैं फ्री में बिजली और गैस मिल जाए तो लाइफ में मजे ही मजे, और हकीकत है कि पब्लिक भी खुश हो जाए। तो ये तो रियलिटी है कि ऐसा हो जाए ना तो मजे आ जाए, स्पेशली बिजली मुफ्त में मिलने लगे तो मैं कहती हूं कोई और गम या कोई शिकवा ही ना रहे। हाय, काश ये ख्वाब हकीकत की शक्ल अख्तियार कर ले कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो भी हम लोगों की मैं कहती हूं वाकई में लिटरली मौजे हैं। लेकिन हाय हाय हाय, ऐसा कहां होता है। कहते हैं लंच में छोले हैं आपके लंच में, मेरे लंच में आज बन कबाब है। कहते हैं पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा, रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी। ठीक है रशीद खान, हम आपके पसंद के ट्रैक को जरूर करेंगे शामिल, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। अच्छा भाई, मोहम्मद असलम के मैसेज को हमने शामिल कर लिया है, ऑल राइट जी। और इसी के साथ साथ जो है हम अपने दीगर मैसेजेस की जानब भी चलेंगे, जो हमारे पास गुमनाम मैसेजेस आ रहे हैं, यानी कि जो अपना नाम नहीं लिख रहा है। कहते हैं आप भी फ्री में पैसे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। फ्री में पैसे मिल जाए, व्हाट, फ्री में पैसे मिल जाए तो ये भी सही है भाई, ये भी मौजे ही मौजे हैं कि फ्री में पैसे ही मिल जाए, मतलब कुछ तो मिले फ्री में, एटलीस्ट जो मिल रहा है वो तो खुश है ही, लेकिन अगर पैसे मिल जाए तो भी अच्छा है। और लुक पड़ आपको गुस्सा कौन दिला रहा है ये भी हमें जरूर बताएं, क्या ये बिजली गैस और पानी तो आपको गुस्सा नहीं दिला रहा है, या कोई शख्स है जो आपको परेशान कर रहा है जिसकी वजह से आपको गुस्सा अब आने लगा है। अच्छा गुस्सा आता है लेकिन जल्दी थम जाता है, मतलब विद इन सेकेंड या मिनट, और सोचते हम कुछ कि अल्लाह इतना गुस्सा आ रहा है, ये कर देंगे, वो कह देंगे, ये करेंगे, लेकिन इन दी एंड होता है कि हम खुद ही बड़ी खामोशी से बैठ जाते हैं, कहते हैं अच्छा चलो छोड़ो, क्या करना है यार लड़ झगड़ कर। तो क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो हमें जरूर बताएं। चलते हैं हम ट्रैक की जाने, बढ़ाते हैं वापस ट्रैक के पास।

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
0: Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365. You're in tune with the lunchtime special on the big one. FM 100.

ओके सो एक अदर ट्रैक कर दिया है हमने आप सभी के नाम। अब इसके बाद हम आपसे ये जानेंगे कि आपके लंच में क्या बन रहा है, क्या बनने जा रहा है या फिर क्या पकाने का इरादा है। तो लंच में क्या है आपकी? बिरयानी है, बन कबाब है, निहारी है, कोरमा है, दाल है, चावल है, सालन है, सब्जी है या फिर कुछ और है। तो आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं। भाई रशीद खान और लुकपल तो बता चुकी हैं कि उनके लंच में क्या है, लेकिन अभी बाकी लोगों से उनका लंच जानना है बहुत जरूरी। तो 3636 पर या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मैसेज करें और हमें जरूर बताएं कि आपके लंच में इस वक्त क्या है मौजूद। थोड़ी थोड़ी गर्मी का भी एहसास होना शुरू हो गया है, तो इसकी वजह से भी थोड़ी लंच में ना तब्दीली आ जाती है। तो क्या कुछ इसी तरह की तब्दीली आपके भी लंच में आ चुकी है मौसम को मद्देनजर रखते हुए, या फिर नहीं अभी भी आप जो है वो निहारी और पाए खा रहे हैं? बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि लोगों के लंच में पाए थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो अभी भी आपके लंच में कोई ऐसी ही चीज मौजूद है या फिर है कुछ मुनफरिद तो हमें जरूर बताएं। भाई फ्रूट प्लेटर खा रहे हैं, दही या रोटी खा रहे हैं, या सलाद का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके लंच में, जो भी आप खा रहे हैं तो भाई हमें जरूर जल्दी से मैसेज करें और बताएं कि आपके लंच में इस वक्त क्या है। हम कर रहे हैं आपके मैसेज का बेसब्री से इंतजार ये जानने के लिए कि आप अपने लंच में इस वक्त क्या खा रहे हैं। जब तक आप लोग हमें बता रहे हैं मैं सोच रही हूं कि क्यों ना लगे हाथों रशीद खान के पसंद के ट्रैक को भी शामिल कर लेते हैं भाई, जिसकी रिक्वेस्ट उन्होंने हमसे की थी। तो उस ट्रैक को भी इंजॉय करें और साथ ही साथ अपने लंच के बारे में भी हमें बताएं कि आप लोग क्या खा रहे हैं इस वक्त। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक।

0: in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
2: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
3: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: शौकत खानम कराची की तकलीफ
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365.
8: توہین رسالت نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں ذمہ دار شہری بنے میڈیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے
9: हेलो एवरीबॉडी सो वी आर बैक और अब जबकि हम वापस आ ही चुके हैं तो क्यों ना आपको एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के बारे में बताते हैं कारोबार को दिए स्मार्ट बैंकिंग की आजादी एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक और जदीद ऑनलाइन बैंकिंग ताकि आप ज्यादा तवज्जो दें अपने बिजनेस पर बिजनेस छोटा हो या बड़ा बैंकिंग होनी चाहिए आसान एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने रोजमर्रा कारोबारी लेन देन को बनाएं मजीद साहिल और तेज हर बिजनेस ओनर की जरूरत एक ऐसा अकाउंट जो दे सहूलत भी और आजादी भी आज ही एचबीएल फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और फायदा उठाएं मुफ्त बैंकिंग की सहूलियत का कारोबारी अदायगी हो या रोजमर्रा ट्रांजैक्शन एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ अब हर काम होगा ज्यादा आसान ज्यादा स्मार्ट अपने बिजनेस को दें डिजिटल बैंकिंग का पावर अप पाकिस्तान की बेहतरीन मोबाइल बैंकिंग ऐप और मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग के साथ सिर्फ एचबीएल फ्रीडम अकाउंट में कामयाब कारोबार की पहचान है स्मार्ट फैसले एचबीएल फ्रीडम अकाउंट अपनाएं और बैंकिंग की झंझट को करें अलविदा बिजनेस चलाएं एतमाद के साथ क्योंकि एचबीएल फ्रीडम अकाउंट देता है आपको वो सहूलियात जो हर कारोबार को है दरकार तो फिर देर किस बात की है आज ही आप भी अपना खुला लें एचबीएल फ्रीडम अकाउंट

ऑल राइट जी, सो वी आर बैक और जो बाकी मैसेजेस हमारे पास आए हैं उसे भी हम लगे हाथों शामिल कर लेते हैं। तो भाई समी शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फातिमा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कहते हैं ओके जी, चलें बिल्कुल हम चेक करवाते हैं, इस मसले को हल करवाते हैं। कहते हैं वैसे अगर इस वक्त की बात की जाए तो मैं एक अच्छा सा मोबाइल लेना चाहूंगा बिकॉज मेरा मोबाइल बिल्कुल एंड पर है। ओके तो भाई समी शेख तो इस वक्त अपने मोबाइल चाहेंगे कि अगर उन्हें फ्री में मिल जाए तो भाई मजा आ जाए। और हकीकत है ये वक्त की जरूरत होती है, और मुझे भी वैसे हकीकत है कि एक मोबाइल की जरूरत है। मेरा मोबाइल भी बेचारा एंड पर ही चल रहा है और बस गुजारा है, लेकिन फिर भी शुक्र है भाई जब तक चल रहा है। लेकिन वाकई में ये भी अब एक ऐसी इंसान की जरूरियात जिंदगी बन चुकी है कि इसके बगैर भी आपका गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब आपकी तमाम चीजें ना आपके मोबाइल में ही होती हैं। वो कॉन्टैक्ट है, वो आपके काम से रिलेटेड कोई चीज है, कुछ ना कुछ तो हर चीज आपके मोबाइल में होती है। तो अब के टाइम में इसके बगैर जीना जो है ना वो काफी मुश्किल हो रहा है, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स मोबाइल, कि भाई मोबाइल हो। और अब मोबाइल में भी ना बड़े कॉम्पिटिशन हो गए हैं कि भाई किसी को आईफोन 17 चाहिए तो किसी को 16 चाहिए, और हर साल जब उसका नया मॉडल लॉन्च होता है ना तो एक और रिग्रेट शुरू हो जाता है कि भाई अब हमें ये वाला लेना है। लेकिन मैं कहती हूं भाई आपके पास जो भी मोबाइल है आप उसे भी हंसी खुशी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपग्रेड से अपग्रेड चाहें। हाँ, लेकिन जब बेचारा बिल्कुल खराब हो जाए तो जरूरी है कि आप जो है वो एक नया मोबाइल ले लें। लेकिन फिर भी द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जरूरी नहीं है कि अगर आप महंगा मोबाइल लेंगे ना तो ही जो है वो सारी चीजें सही रहेंगी, तो ऐसे भी गुजारा चल सकता है। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म, क्योंकि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल अपने अख्तितामी मराहिल के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। तो इसी के साथ साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। तो जी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, लड़ाई माफ करें, अपने दोस्तों से हाथ मिलाएं, अच्छी बातें करें, शेयर करें, और अगर कोई आपसे नाराज होता है तो मसले को हल करने की कोशिश करें एज सून एज पॉसिबल, न कि उस मसले को तवील करें कि जी हाँ जब तक वो माफी नहीं मांगेगा मैं माफ नहीं करूंगा या चीजों को सॉर्ट नहीं करूंगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप करें या वो करें, लेकिन जरूर करें और जितनी जल्दी हो सके मसलों को करें हल। और इसी के साथ साथ आप हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल टुमारो।

0: in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम कराची की तकलीफ
2: Us on facebook.com/fm247365
4: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے وسائل سے زیادہ

0: Hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned in to FM 100 Pakistan, and aap sun rahe hain program Dental Room, which is brought to you by Platinum Pharma. So, aaj hamare saath show pe maujood hain Dr. Zahir Hussain Chachar, BDS FCPS FICOI Associate Professor and Head of Department, Consultant, Periodontist and Implantologist, Clinic Dr. Zahir Hussain Chachar and Associates, Dental and Implant Center. Bukhari Commercial DHA Phase 6 Karachi. So hamare saath Dr. Zahir Hussain Chachar maujood hain. Aaj hum inse dental implants ke hawale se aur daanton ke jitne bhi issues hote hain iske hawale se jo hai show par discussion karenge. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Thank you so much Dr. Zahir for being here. And acha kaise hain?
1: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं।
0: अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं अपने शो पे अबाउट डेंटल इम्प्लांट्स के हवाले से, एंड दांतों के जितने भी मसाइल होते हैं, गम्स के इश्यूज होते हैं, जो भी दांतों के पेन के हवाले से, जो दांतों में अक्सर दर्द रहता है, इस हवाले से, इश्यूज के हवाले से हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट डेंटल इम्प्लांट्स, जो कि आजकल बहुत से लोग जो हैं वो करवा भी रहे हैं, और एक उनका जिसे कहते हैं डर जो है वो खत्म हो चुका है काफी हद तक। सो सबसे पहले बताइए कि डेंटल इम्प्लांट्स के लिए डॉक्टर साहब जैसे कौन से जो है वो एक कैपेबल पेशेंट्स होते हैं, और कब ये करवाना चाहिए, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कब ऐसा लगता है कि अब डेंटल इम्प्लांट्स की जो है वो जरूरत पड़ गई है?
1: अच्छा देखें, बेसिकली तो डेंटल इम्प्लांट एक रिप्लेसमेंट थेरेपी है।
0: सही।
1: जब आपका दांत खराब होकर निकल जाता है तो वहां पे रिप्लेसमेंट के दूसरे भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर आप बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो कि लग सकता है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन एंड एस्थेटिक्स, तो वो डेंटल इम्प्लांट को कंसिडर हम करते हैं।
0: सही।
1: और कैंडिडेट की बात करें तो एनी वन कैन बी ए कैंडिडेट। उसमें ये होता है कि हमें जैसा दांत पेशेंट का खराब है या निकलने वाला है तो उससे पहले ही हम इम्प्लांट का ऑप्शन दे देते हैं, बजाय कि वो निकले और उसके बाद वो चीजें वहां पे बोन और मसूड़ा कमजोर हो, इससे पहले हम डेंटल इम्प्लांट का ऑप्शन अगर पेशेंट को दें तो ज्यादा फीजिबल होता है पेशेंट के लिए।
0: सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही ये भी बताइए कि जैसे अगर किसी का दांत जो है वो टूटा हुआ है या गायब है, और अगर वो उसको नहीं तब्दील करवा रहा है, तो इससे कोई ऐसे सीवियर इश्यूज हैं जो हो सकते हैं, कोई ऐसे मसाइल हैं जिससे जिसकी इसकी वजह से काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं?
1: जी, दांत अगर नहीं

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Across the nation, there is only 100 FM.
2: देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
5: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
6: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया। अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
7: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
8: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
9: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM247365. In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
11: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम। 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5, आजम बस्ती कराची, सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची, सोबराज अस्पताल कराची, शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
12: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
9: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
13: A bigger variety of broader music mix on the biggest hit.
14: Biggest hit.
13: Only on your favorite radio. FM 100. FM 100.
0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. across Pakistan. This is FM 100.
15: Innovative.

Alrighty, everyone. Welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान and बिल्कुल आप लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर. तरीकेकार बहुत ही आसान है. जिस टाइप के शायद अनलीव स्पेस आपका मैसेज आपका नाम आपकी रिक्वेस्ट और से 3436 पर भेजना है और इसी के साथ साथ जो है facebook.com/orjit.jasmine इस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं. और कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं हमें. सो हमारे पास मैसेजेस आना जो है वो शुरू हो गए हैं एंड निदा का मैसेज आया हमारे पास पेज पे. वालेकुम अस्सलाम निदा, बिल्कुल ठीक ठाक. हाँ यार, बस पता है ये जो फ्लू इस दफा हुआ है ना, वैसे नॉर्मली मेरे साथ ये होता है कि मुझे काफी टाइम, अगर मुझे फ्लू रहता है तो बड़े टाइम बाद जाता है, और खांसी स्पेशली तो वही जान ही नहीं छोड़ती है. बेहतर है पहले से. आप बताइए आप कैसे हैं. और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है बहका रे बायशरा सुपल, ठीक हो गया निदा. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, अप्रिशिएटेड. आपका हम सॉन्ग प्ले करेंगे थोड़ी सी देर में. ओके, मलिहा ने हमें मैसेज किया है. वालेकुम अस्सलाम मलिहा. एंड मलिहा ने रिक्वेस्ट किया है कभी मैं कभी तुम का ओएसटी. ओके, जरूर प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. सो मीनवाइल अभी हम निदा की रिक्वेस्ट की तरफ जा रहे हैं. मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. हमारे साथ रहेगा.

0: Genie. Genie in radio. Radio.
1: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
2: Shokatanam Karachi Ki Takleef.
3: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
4: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
1: Like us on facebook.com/FM247365
6: FM247365
7: Let's celebrate
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
9: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine. Genie in a radio.

Ladies and gentlemen, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan, and the show is called Genie in our Radio. My name is Jasmine. So, janab, aap log bilkul hume messages kar rahe hain 3636 for and facebook.com/orchid.jasminejzmine. Is pe bhi aap log bilkul hume apna feedback de sakte hain aur message kar sakte hain for your request. Kyunki hamare paas jo hain wo पेज पे काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सो हम जल्दी से उनके नाम शामिल कर लेते हैं और रिक्वेस्ट भी शामिल कर लेते हैं. हमारे पास मैसेज आया है रजा का. वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक रजा, बताइए आप कैसे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड दिल कमला ने रिक्वेस्ट किया है फाखिर का, ठीक हो गया जनाब, जरूर आपके लिए प्ले कर

0: bigger variety of brighter music mix on the biggest hit.
1: Biggest hit.
0: Only on your favorite radio. FM 100. FM 100. 100.
2: When no one is with you, I am here for you to make you happy and to give you the right direction. I am the radio.
3: FM 100.
2: Let the music take control. Control.
3: Let the music take control.
2: That is FM 100 Pakistan.
4: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
6: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
7: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
8: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
9: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM 247365.
2: Let the music take control. Control.
3: Let the music take control.
2: That is FM 100 Pakistan.
10: Your favorite number. Number. On my fingertips.
11: Fingertips.
10: Catch your favorite number within no time.
11: No time.
10: Genie in a radio.
11: Genie in a radio.
10: With your very own RJ, Jasmine. Jasmine.

Alrighty everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं 100 पाकिस्तान एंड बिल्कुल आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं हमें 3636 पर 17 मिनट पास्ट 3 ऑन द डायल राइट नाउ. 4 बजे तक आप लोगों के साथ हम मौजूद हैं. ओके, नूर ने हमें मैसेज किया. वालेकुम अस्सलाम नूर, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं, आप बताइए आप कैसे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज.

0: Alrighty, everyone, welcome back. I'm Sunera from 100 Pakistan. And it's 28 minutes past 3 on the dial right now. 4 baje se thoda sa pehle aap log ke sath maujood hain. Aur request hamare paas kafi sari lineup hui hai. Okay, Anam ne message kiya hai. Wa alaikum assalam. Bilkul theek thaak page pe message kiya unhone. Your timings are Wednesday and Thursday, 2 to 4. These are the timings. Aap is pe sun sakti hai show, FM 100 per. And request karna chahti hai to 3636 pe bhi aur facebook.com/rj.jasmine. You can also follow us on Instagram by the name of jasmine_mhjzmine_hmnd. Meanwhile, jaane ek choti si break ki taraf. मिलते हैं इस गाने के बाद. उन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया हुआ है गलत फहमी. ठीक है, जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. मिलते हैं अभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम. 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5, आजम बस्ती कराची, सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची, सोपराज अस्पताल कराची, शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है. इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं. बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं. खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध.
3: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
4: वाजिदा वीकली लकी ड्रॉ विनर कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
5: FM247365 FM247365.

Genie in Radio. Radio. Radio.

0: 100. Station claim.
1: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
3: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें। फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए। याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है। आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके। पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना। याद रखें, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता। लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें। और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें। अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या PTA CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या PTA की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें। व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें। इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.nccia.gov.pk पर भी कर सकते हैं। बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.pk पर विजिट करें। याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी।
4: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: facebook.com/fm247365
6: fm247365.
7: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine.

Alrighty everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं फ्रॉम 100 पाकिस्तान एंड आप लोग बिल्कुल हमें मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर. आप लोग को बताते चले कि शो का टाइम जो है वो थोड़ा सा रह गया है एंड ट्रैक्स हमारे पास काफी सारे जो है वो लाइन अप हुए हैं. हमें मैसेज किया था बुशरा ने एंड अजनबी सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है उन्होंने आतिफ असलम का. सो इफ यू आर लिसनिंग दिस ट्रैक इज फॉर यू बुशरा. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज. Assalamu alaikum Pakistan.
3: Assalamu alaikum Pakistan. Pakistan.

0: in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: FM 100 traffic update.
1: पाकिस्तान एफ एम 100 पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूँ फरुख हजार। शहर कराची की सड़कों और चौराहों पर इस वक्त की सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफ एम 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक शरफाबाद से वो ट्रैफिक जो इस वक्त आ रहा है शहीद मिल्ला ग्रोव की जानेब मेडिकल हॉस्पिटल की जानेब, दरमियानी रास्ते में देवरी का पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। तो तमाम लोग जो इस रास्ते पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए। इसके साथ साथ वो ट्रैफिक जो कयूमाबाद चौरंगी से बलोच कॉलोनी ब्रिज की जानेब आ रहा है उस पर भी ट्रैफिक का काफी ज्यादा दबाव है, लिहाजा अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि हर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफ एम 100।
0: This traffic update was brought to you by FM 100.

哎呀。

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: In setting up low-cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
4: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम। 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5, आजम बस्ती कराची, सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची, सोबराज अस्पताल कराची, शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं।
5: बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
8: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
9: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
10: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
9: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
10: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
9: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
11: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें।
12: शराइत ज़वाबित लागू है।
13: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।

0: Your location for maximum music.
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
4: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली.
5: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
6: खैर ही खैर है. HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
5: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
6: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
5: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
8: शराइत ज़वाबित लागू है.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
9: एंड सर सब नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा.
10: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
11: And try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
12: And
13: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
14: FM247365.
15: Back to back, back to back. Only music, no art to talk.
16: Only music, no art to talk.
15: This is FM 100.
17: Come on.

0: setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
5: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
6: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
5: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
6: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
5: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
8: शराइत ज़वाबत लागू है।
9: वाजिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: सर, सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।

0: दाना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
3: शौकत खानम कराची की तकनीक।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
5: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर तीन महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
6: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर तीन महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
7: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-27584922 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
1: This program is brought to you by HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL।
8: And सर सब नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा।
9: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
10: And try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally।
7: And via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
1: On facebook.com/fm247365
11: fm247365

0: 24/7, only on 1 FM 100, the best entertainer.
1: ग्यारह आशारिया नौ फीसद।
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
3: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
0: 24/7, only on 1 FM 100, the best entertainer.
1: 11.99%, 11.99%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
3: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
0: 24/7, only on 1 FM 100, the best entertainer.
1: 11.99%, 11.99%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
3: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.99%।
5: This is your music.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL. 100 FM.
1: 11.9%, 11.9%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.99%।

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
2: शौकत खानम कराची की तकनीर।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
4: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
5: वो खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
6: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
5: HBL जरई बैंक की वजह से?
6: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
5: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूम के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
8: शराय तो जवाबत लागू है। 100 FM
9: 11.9% 11.9%
10: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
11: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
9: 11.99% 100 FM
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: 100 FM 11.99% 11.99%
10: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
11: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
9: 11.99%
12: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नताइज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसानात से महफूज रखें। www.pta.gov.pk मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
13: एंड सर सब नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा।
14: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
15: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
16: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
17: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
18: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
17: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। حکومت پاکستان.
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
19: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: PM. The Sound Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक।

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।
3: 11.9% 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: And try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
9: And we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.

0: setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोबराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
3: का वीकली लकी ड्रॉ विनर कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
4: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली
5: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है
6: खैर ही खैर है HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है
5: HBL ज़रई बैंक की वजह से
6: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला
5: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा
7: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म ज़रई आलात और मवेशी शो के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें
8: शराइत ज़वाबित लागू है
9: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
10: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
11: शौकत खानम कराची की तकदीर
12: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
13: 100 FM
14: 11.9% 11.9%
15: ओ भाई क्या है ये 11.99% ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए
16: पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है शराइत और ज़वाबित लागू है
17: 11.99%
18: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
19: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
14: 11.99% 11.99%
15: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
16: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
15: 11.99%।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: एंड सर सब नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा।
13: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
17: And try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
20: And via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
21: FM 100, like us on facebook.com/fm247365.
22: FM 247365.
23: Legend always alive.

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL. This program was brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL. And
1: Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
2: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: And try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
4: And
5: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL.
7: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
8: शौकत खानम कराची की तकदीर.
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट.
10: 100 FM.
11: 11.9% 11.9%
12: ओ भाई क्या है ये 11.9%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त

0: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
0: 11.99%
2: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा टाइसन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो जेरो इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
3: झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
4: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
5: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
4: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
5: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
4: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
6: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
1: शराइत ज़वाबत लागू है।
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
0: 11.99% ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
0: 11.99%
7: This program is brought to you by HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
8: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Let's celebrate the journey with DJ Grisella.
10: All right, friends, welcome back to the Episode Radio. I'm coming in with an amazing number. I've just waited to bring this track on the time. For so long, there was so many commercials. Yeah, a word from our sponsors does play a vital role on my show. Thank you so much, Teddy Swims and, of course, Celine Dion. So here we go.

0: फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: 100 FM।
4: 11.9% 11.9%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
7: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
8: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
10: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
11: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डाली डाली।
12: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
13: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
12: HBL जरई बैंक की वजह से?
13: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
12: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
14: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और शियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
15: शराइत ज़वाबित लागू है।
16: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
4: 11.99% 11.99%।
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
17: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL सरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
18: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका शरीर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
19: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 8 p.m. The Sound Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: This program is brought to you by HBL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarai alat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM 247365.
4: FM 100.
5: 31 saal. FM 100 aapki awaaz. Assalamu alaikum Pakistan.
6: Assalamu alaikum Pakistan.
7: Evening drive time.

then this is what life is. This one's for you, darling.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताजीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: This program is brought to you by HPL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
4: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियाँ छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7/365

0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: This program is brought to you by HPSI Banking के पास है poultry farm, fish farm, सरई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत। This public service message is brought to you by FM 100. ट्रैफिक कवानीन और इशारों की पाबंदी कीजिए, इनकी खिलाफ वर्जी काबिले गिरफ्त जुर्म है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। इवनिंग 5 टाइम

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: This program is brought to you by
2: HPSI Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayala aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
0: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना. इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए. ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए.
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM 247 365.
5: Evening Drive Time.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum Karachi ki Takneek.
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
1: अपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। अपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम। कराची की तकलीफ।

0: जबरदस्त सिंगर गेस्ट आए हैं जो बेसिकली इटली से आए हैं काफी अर्से पहले, मगर अभी तक यही इतना पसंद उनको आ गया पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। ऑलराइट, अब एक गाना जो अभी थोड़ा सा हमने आपको चखाया था,
1: नाम तो बताएं,
0: उसको नाम भी, नाम क्यों बताएं भाई, नाम खुद ही पहचानने दे रहे हैं, नदीम इटालियन उनका नाम जनाब। अब वो ये जो ट्रैक चलेगा उस पर ये गाएंगे, और आपको रेडियो से जो आप सुनेंगे तो उसकी आवाज के साथ म्यूजिक भी आ रहा होगा, मगर इत्तेफाक से अगर आप इस पे सुनेंगे ना क्या बोलते हैं वीडियो में, अगर आप फेसबुक पे आकर सुनेंगे तो उनकी सिर्फ आवाज आ रही होगी, उम्मीद भरी आवाज आ रही होगी, इसलिए बर्दाश्त कीजिएगा। और गाना यही है, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तैयारियां पहले से किया करो भाई, हो गई, रेडी।

0: your location for maximum music.
1: And of course, just... दोस्त ने बहुत ही अच्छा गाया है यहाँ. एक्चुअली म्यूजिक भी चल रहा था इसलिए पता लग रहा था आपकी तरफ. तो सिर्फ अगर फेसबुक पर आप देख रहे थे तो अरे समझ रहे कि म्यूजिक भी चल रहा था. अच्छा किसी ने ये लिख के भेजा है कि ये अंग्रेजी में है मगर क्योंकि मजबूरी है कि बनना पड़ेगा. 90% ऑफ वुमन 90% of married women do not love their husbands. They are just happily married. They're just happy to be married, you know. Modern marriages is not about love. Modern marriages, they are not about love. It's about convenience. It's about security, it's about validation. A woman's loyalty is conditional. Her failure... No, not a failure. Her faithfulness is temporary. Her devotion is only as strolling. As strolling as an option. Hypergamy is undefeated. Women are married to seek the highest. Women are wired to seek the highest value man they can get when they say I love you. She often means I love what you do for me. I love the lifestyle you provide. I love others perceive me because of you. I love I do not have to compete anymore. But does she love you? Really? Or is she just satisfied to have a lockdown, a provider, a status symbol, a walking retirement plan? A woman's love is a transitional. No, transitional. A woman's love is transitional. Or maybe transactional also. The woman you lose your value. The moment. औरत ये देखती कि जहां इसने अपना value lose किया, she loses interest in you. The moment you stumble, मतलब तो लड़का आए, तो she re-evaluates you. मतलब आपको re-value करती है. The moment other man presents a better deal, She rethinks everything. This is why divorce rate are skyrocketing nowadays. तो खबरदार हजरत बात यह है कि आप काफी कुछ समझ गए होंगे. आप भी वाकई समझदार लोग हैं जो मुझे सुनने वाले हैं. बेसिकली माई ऑडियंस जी सबको अंग्रेजी जरूर आती होगी और ये जो बातें हैं ना थोड़ी सी इंटेलेक्ट को टच करती हैं कभी कभी तो वो भी उसको भी समझते हैं. और इस पर ही मैंने एक गाना मैंने भी गाया है. मैं वो सुनाता हूँ आपको.

0: This program is brought to you by
1: HPSI Banking के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Like us on facebook.com/fm247365
5: fm247365.
6: This is your music.
7: Yo, yo, mucha gasolina en el perro.

0: All right, my dear friends, welcome back from the break. You heard the gentleman, then you heard me. My message was that I have seen such bad times, and I don't know how I just got over them. They just passed away. Yeah, because I put them behind my back. Yeah. We've got love to share. You should always strive to come out of all the misery you are in, if you think you are. Anyways, mere jo dost hain wo phir bhi hai ek gaane ki request karta hu laaye hain asal mein wo unki zuban abhi tak sahi nahi hai aur wo ye song hai ye song jo hai na iske piche ek bahut badi kahani hai ye isliye ke rangila saab hamare industry ke wahid ek superstar comedian the कॉमेडियन के साथ साथ वो एक्टर भी बहुत जबरदस्त थे उसके बाद वो प्रोड्यूसर भी बन गए फिर हैं प्रोड्यूसर बन गए डायरेक्टर भी बन गए और म्यूजिक डायरेक्टर भी बन गए उन्हें फिल्म बनाई सोलो फिल्म बनाई और उसमें उन्होंने एक गाना ऐसा गाया कि दिल सीना फाड़ कर बाहर आ गया उसके बाद वो है मेरा महबूब मेरे महबूब मेरे प्यार का महबूब मेरे प्यार का पता नहीं
1: कातिल
0: क्या
1: कातिल निकला
0: तो ये आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारे उबलते हुए फनकार गुलुकार और क्या बोलते हैं ट्रेडर दुकानदार बच्चेदार सब कुछ है आपको ये गाना सुनाएंगे मैं मजाक कर रहा था जरा गौर से सुनिएगा आपको मजा आएगा हैं नदीम इटालियन

0: This program is brought to you by HPL Zari Banking के पास है poultry farm, fish farm, सारा यालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत.
1: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: my dear listeners and my dear friends. ये गाना जिन्होंने रीडू किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ कि गाना बहुत अच्छा है, उन्होंने रीअरेंज किया है. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. इसी तरह जैबी खान जैदी ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं बिटवीन सन. बात सुने, अच्छा सुनाए. जैबी खान कहते हैं मुझे एक सॉन्ग सुना दे. कौन सा भाई? कहते हैं प्लीज. ओके, फिर जैब खान जैदी फिर कहते हैं अरे नो रिस्पॉन्स. अरे भाई कोई, जैबी खान कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम. उसके बाद कहते हैं जैबी खान जैदी कहते हैं लिसन. बस लिसन करने के बाद कुछ नहीं कहा. तो खैर, अब प्रोग्राम तो चल रहा है और ये मेरे फ्रेंड नदीम इटालियन भी साथ बैठे हुए हैं, वो भी गाने के लिए तैयार हैं. फिलहाल हमने यही सोचा कि आज जो हम म्यूजिकल ज्यादा रखें, बातचीत कम रखें. जैदी खान कहते हैं कि इन बहारों से कहो, इन नजारों से कहो, कहो हम प्यार का सफर को चलें. आए भाई चलें, चले भाई चले, तैयारी पकड़े. कहते जैबी खान कहती है कि आई एम अ गर्ल. अच्छा भाई क्या पता, जैबी खान जैदी कहते नॉट मी, नॉट मैन. तो भैया हम तो शायद हम मर्द ही हैं भाई. खैर, हमारे साथ खातून भी होंगी नेक्स्ट. आपका शुक्रिया कि आप ये प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं. हम आगे चलते हैं. ये जो प्यारे प्यारे से गाने गुफरान साहब ने एंडलिस्ट किए हैं, इनमें से एक एक करके आपको मैं सुनाता हूँ. जुहेब, अच्छा जुहेब अरशद भी हमारे साथ शामिल हुए, तीन तीन रेड हार्ट्स के साथ. फिर जैब खान जैदी कहते हैं मुझे सॉन्ग सुना दें. हाँ भाई कौन सा सुना दें जैबी जी, हम तो रुक नहीं सकते ना. जब तक आप सोच लें हम आगे आगे गाने चलते हैं. हाँ एक गाना है फिर, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो. ये सुना गया हमको नदीम इटालियन. अगर आप इसको रेडियो पे सुनेंगे ना तो आपके म्यूजिक के साथ आपको सुनाई देगा, और अगर आप फेसबुक पे सुनेंगे तो उसकी मधुर आवाज ही सुन सकेंगे. ठीक है, ओके. नाउ वी आर गोइंग टू कभी तो तुमको.
1: तुम्हें कैसे
0: अभी कहाँ गया भाई? जब जब कभी मेरे महबूब. हाँ

0: FM 100.
1: आप कह रहे हैं कि इन बहारों से कहो, इन नजारों से कहो, हम प्यार के सफर को चले हैं। और ये गाना मैंने ही गाया है, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे ये गाना याद ही नहीं है कौन सा गाना।
2: लड़की है, जैबी लड़की है।
1: हाँ ठीक है, जैबी साथ यंग लेडी, जैबी जैबी है। और देख खान लेते हैं हमें गए। ओके ओके ओके, जैबी खान जैबी आपका सॉन्ग है, बिल्कुल मेरा है, हो सकता है, मुझे नहीं पता। इन बहारों से, अच्छा ये आपका सॉन्ग है, क्या बात है भाई। अच्छा जी, ये तुरहा बकर वानिया, डू यू हैव द ऑडियो ट्रैक ऑफ योर्स? ए दुर्बा जाना, वेयर यू वेयरिंग ब्लू जीन्स एंड ब्लैक शर्ट, व्हाट वाज द एल्बम नेम? सॉरी I cannot answer this. I'll go home when I see your messages. I will answer them properly. Prabhakar Vania, do you have the audio track? Okay, the same. Do you have the audio track? Okay, yeah. Okay.

अच्छा, मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता जो इनलिस्टेड है. आई एम प्लेइंग दैट सॉन्ग फॉर यू. और ये है 24/7 लख हिलना, मीशा शफी एंड साहिर अली बागा.

0: से महके
1: मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल दिल में रहती नहीं जान अब तू ही दिल आज फिर आई ना तू
2: पूरी पूरी किताब लिख जाते हैं और ये पूरी पूरी किताब गा भी देते हैं मगर ये आसान काम नहीं है।

0: Your location for maximum music.
1: I'm sure आपको ये आज का प्रोग्राम जो है ना ऐसा लग रहा भागता हुआ प्रोग्राम है और नदीम भी अच्छा गा रहे हैं अजीब बात है वैसे मेरे ख्याल में नदीम साहब एक और हो जाए चेंज हाँ कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें अच्छा ये यही है ना कभी तो तुमको याद आएंगे ओके कभी तो तुमको याद आएंगे ये असल में अखलाक अहमद मरहूम का गाना है और ये रॉबिन घोष की मौसीकी में है और फिल्म तक कौन था
2: चकोरी
1: माय गॉड नदीम इज वेरी फर्स्ट मूवी नदीम डेब्यू Okay, Janab, ready to go? Here you go.

मेरे दोस्तों। अब जरा सा एक और चेंज करते हैं, एक आतिफ का सॉन्ग सुनते हैं जो किसी ने बहुत पुरजोर फरमाइश भेजी है सेलफोन पे, और वो उसका नाम है देखते देखते, भाई आतिफ असलम।

मजा आ गया जी। आतिफ इस सॉन्ग का काफी अर्से बाद सुनने का मजा इसलिए आ गया, रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी, सिंगिंग इतनी अच्छी, तलफ्फुज इतना अच्छा और सुर में भिगो की आवाज बनाई है, और अच्छी बात है। वेरी गुड आतिफ साहब। और अब हमारे मेरे जो दोस्त साथ में बैठे हैं उसके घर वाले भी कह रहे हैं कि भाई हमें सोने का वक्त हो गया और खुदा के लिए एक आखिरी गाना गा दें ताकि हम आपको घर में फिर घुसने दें। तो देखिए अब ये नदीम इटालियन साहब जो है वो गा रहे हैं

0: And of course, मैं कहता हूँ कि जिंदगी में उड़ नहीं सकते तो भाग भाग भाग भागते रहो, भाग नहीं सकते तो चलते रहो, चल नहीं सकते तो रेंगो, जिंदगी में कभी रुकना नहीं। मगर बच्चा कहता है,
1: अरे वो तो सब ठीक है मगर जाना कहाँ है।
0: ये बच्चा जो ना जो बड़े होते हैं, बड़े तो मगर कद नहीं बढ़ता उनका, वो बच्चे नहीं वो बड़े हो जाते हैं, मगर इसलिए उनकी आवाज इस तरह हो जाती है। जनाब चूंकि ये ऐसी जबरदस्त महफिल चली है, राहत फतेह अली खान ने जो ट्रिब्यूट दिया है अपने अंकल को, बहुत ही अच्छा उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया कि हमको यही लग रहा है कि इसी टाइप का एक और सॉन्ग आप लोगों के लिए मैं सुनाऊं, जो कि तू झूम करके उसका लकब है और नसीबोलाल नाबदा परवीन ने एक दूसरे के मुकाबले में ऐसा गाया, दोनों ने अपनी अपनी जगह ऐसी बनाई है। तौबा तौबा तौबा तौबा, आप जरा सुने तो मजा आ जाएगा आपको। और इसके साथ ही अभी से हम आपको खुदा हाफिज एंड शब बखैर इसलिए कहेंगे कि एक गाना टाइम चेक पे ही खत्म हो रहा है और ऐसा सॉन्ग है कि इसको बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए और जीव नहीं चाहता। ये नसीब बुरा सुने

আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম পাকিস্তান। মেরা নাম নদীম আখতার, প্যার সে আপ লোক মুঝে কেতে হো এনে সোনে হাবিবি। आपका और मेरा साथ है जनाब, तीन बजे तक, और तीन बजे तक करेंगे खूब हल्लाते गुल्ला। इस हल्ले में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, क्यों चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी के हेडलाइट लो बीम पर रखे, ट्रैफिक सिग्नल की पास जारी करें, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं कोई ना कोई सवाल फ्लोट करता हूं, आप देते हैं उसका जवाब, लेकिन उससे पहले मैं करता हूं आपको वार्म अप। वार्म अप करने के लिए जो गाना चलेगा वो अभी पहले नहीं चलाएंगे, पहले आपको आज के शो का पैटर्न बता दें जनाब, और आपके वोटिंग भी चाहिए। आज के शो को मैं स्पेशल नाम दे रहा हूं, द जेन ज़ी शो। आज का शो होगा यंगस्टर्स के लिए, जेंजीज के लिए, बुध वाला दिन, व्हाट यू थिंक? तो आज के शो में जितने भी ट्रैक्स चलेंगे वो भी जेंजीज के पसंद के चलेंगे। भाई एक मैंने सोचा कि ओल्डी गोल्डी क्लासिक होता है, एंड देन एक गजलों का प्रोग्राम होता है, एंड देन फिर और भी हल्ले गुल्ले के प्रोग्राम मिक्स चल रहे होते हैं, तो एक प्रोग्राम यंगस्टर्स के लिए, जेंजीज के लिए भी होना चाहिए। वो तो इस वजह से, वैसे मैंने पहले भी सोचा था बट अब टोटली एप्लीकेबल हो गई, और सवाल भी कुछ वैसे ही होंगे। सो आगाज करेंगे जनाब एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक से, ताजी का एलो पढ़ो।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, मैसेजेस कर सकते हैं 3636 पर, आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन हम करेंगे पहले आपसे सवाल। सवाल ये है, बहुत ही आसान सा सवाल है। आपके वालिदैन यानी कि अम्मी अब्बू यानी कि पापा मम्मा और आप में, या आपको कौन सी चीज जोड़ती है? कोई ना कोई तो चीज होगी यार। वैसे तो कहते हैं ना,
1: हाय पूरी अम्मी लग रही है, हाय पूरे अब्बा की तरह भाई ये।
0: अच्छी आते सारी अम्मा की तरह होती है और बुरी आते सारी बाबा की तरह होती है,
1: ये चलता रहता है, ये क्या करे।
0: तो आपके मम्मी पापा यानी कि आपके अम्मी अब्बू और आप को कौन सी चीज जो है वो जोड़ती है, ये आपने बताना। ये अब आप खुद बताएंगे बॉन्डिंग के हवाले से, ये क्या है या क्या नहीं है। स्पेशल क्वेश्चन फॉर जेन ज़ीज, और चाहें तो यार जेन एक्स और मिलेनियल्स भी बता सकते हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो बढ़ते हैं आपके मैसेजेस के जानिब। सबसे पहले फीदा खड़ा है यूसुफ भाई ने बबोश से। FM100 के तमाम फैमिली को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा, खुसूसी तौर पर आंटी चाची अरूसा गुलबान और तमाम डॉक्टर्स इमरान भाई खिताबुल्लाला और गुबरान भाई और मेरे वालिद मोहतरम को बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद भाई आ गए हैं, आपका छुट्टा भाई, आइए आइए आइए, कैसे हैं भाई? और शकील भी सुन रहे हैं और चीफ साहब। बस भाई कल वाला मैसेज तो नहीं भेज दिया, कल चला तो दिया था। मैं भी खरीदार हूँ, आज कुछ नए सुना, नए सुने जो आजकल के बच्चे सुन रहे हैं वो सुने आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? लाला को, संजीदा को, मोश को, मानूर को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम कह रही है एस गर्ल। वाह जी वाह, क्या बात है। मिर्जा साहब आगे ने कह रहे हैं फ्रॉम गुजर खान, तो अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब अर्ज है। संजू इज हियर, संजू क्या कह रही है, संजू क्या कह रही है, संजू कुछ नहीं कह रही। कल के मैसेज थे भाई। असल

0: गुजरा है फैमिली के साथ माशाल्लाह से। आपकी मिजाज और तबीयत कैसी है? मैं पक्की वाली अब कुट्टी होने वाली हूँ। कल संजू को अपनी पसंद का सॉन्ग क्यों डेडिकेट नहीं किया? हाय हाय। भाई मांटी है, अब कभी नहीं कहूंगी, पक्का वादा है। शो के सभी फैमिली मेंबर्स को बेस्ट विशेस और आदाब। यार कल संजू को मैंने बहुत सारे गाने डेडिकेट किए थे, हो सकता है ये मिस हो गया हो। तो मुश्क आज का शो तो है ही आपके लिए, जेंजीज के लिए यार। तो आज तो मूड सेट करो। मोहब्बत में नाराजगी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सब कुछ पोस्ट के जरिए कहना पड़ता है। ये और एक बंदे के लिए लिखी गई बातें चार बंदों के दिलों पर ठा करके लगती हैं। कहते हैं अपनी बीवी की कदर करो पागलो, जिन्होंने तुम्हें यूं ही पसंद कर लिया, वरना तो वो एक सूट पसंद करने के चक्कर में पूरी दुकान के तहस नहस कर देती है। बात तो ठीक है भाई। औरत बड़ी ही प्यारी मखलूक है, इसका मूड खराब हो तो पूरी कोशिश करती है कि ठीक सामने वाले का भी ना रहे। जैसे सही है। ओके टेक बात कर रही है मश्क। मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, मैं बड़ी हो गई हूँ लोग कहते हैं, बूंदा बांदी हो रही है, ये नहीं मालूम इसमें बूंदा कौन है और बांदी कौन है, क्या आपको पता है? नहीं, मैं भी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। है मुश्क। तो इसी बात पर हम आपको लेकर चलते हैं एक और बहुत प्यारे से ट्रैक, जाने बैल पड़ो।
1: सही मैं राजी होई, इश्क ते पास ही होई, दिल दा ओ जाने मेरे नाल होवे, सारे हया ते रहना, नखरा मैं उंदा।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको एंड आई होप आपको ट्रैक पसंद आया। रॉकेट लॉन्चर मानो और अली सेठी इन दोनों ने गाया है मिलके और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। प्लीज सज्जाद अली का या मेहंदी हसन का आवाज में कोई सॉन्ग सुनवा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी, पेशगी शुक्रिया। नसीम कुरैशी, समी शेख अयूब आफरीदी, खिताबुल्लाह इमरान रियाज और आपके वाजिबुल एहतराम वाले मोहतरम की खिदमत अकदस में मेरा खैरत भरा सलाम पेश कीजिएगा। नेक ख्वाहिशात के साथ हर लम्हा दुआ गो अली मुद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब एफ बी एरिया कराची। नदीम भाई मेरा ये मैसेज जो है शो में जरूर शामिल कीजिएगा। ओके जी, कह रही कि एक सॉन्ग लैला के नाम पर कर। ओके जी बिल्कुल कर देंगे। और आगे बढ़ते हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ भाई पापू से फिर आ गए और फिर सलाम कर रहे हैं। भाई आपको याद होगा मैंने बताया था अकदूस कौन, अकदूस सोमरो की शादी का यार कैसी कैसी बातें लिख देते हैं आप, मैं भी नहीं पढ़ रहा लेकिन आपने जो दुआ का गाया है वो मैं दिल में कर रहा हूँ, उसकी वजह है मैं आपको बताऊंगा बाद में। यूसुफ भाई शो के आखिर में, यानी कि समझ रहे ना, आपने मैसेज करना है मुझे दोबारा यही वाला। और अच्छा भाई आज का शो क्योंकि जेंजीज के लिए मैं कर रहा हूँ और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये उस तरीके से शो नहीं चलेगा जैसे कि रेगुलर शो होता है। जैसे जैसे जेंजीज को पता चलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इस शो का मजा जो है वो दोबारा होना शुरू होगा, यानी कि समझ आए ना आप। हाँ तो मौश्क तुम्हारे चुटकले का है आज तो होने चाहिए ना पक्के पक्के, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वैसे ये जो मैंने एक चीज सोची है इसके बारे में आप क्या कहेंगे ये भी जरूर बताइएगा। इसी बात पर आपको एक और ट्रैक की जानिब लेकर जा रहा हूं। ये ट्रैक जनाब बैंड है टावर्स और ट्रैक का टाइटल है फिलहाल।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। अरे नहीं, अच्छा भाई हमारे साहबजादा साहब ने जो है वो एक चुटकुला भेजा है जो कि मैं नहीं पढ़ूंगा, बस इतना जरूर कहूंगा कि एक चचा को एक साहब ने ये बोला कि चचा ये अंडे क्यों बॉयल कर रहे हैं आप, हैं साहबजादा साहब, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, एक चुटकुला चले मैं आपको सुना देता हूँ, ऐसी क्या बात है जनाब। फिलहाल ये कहना चाहूंगा जनाब कि आप मैसेजेस कर सकते हैं 3636 पर, स्लीपलेस नाइट, वैसे आपको एक चुटकुला सुना देते हैं कि आपको पता है कि मर्द जो होते हैं बार्बर शॉप पर जाते हैं हजाम के पास बाल कटवाने के लिए, और उसके बाद जब आप घर तशरीफ लाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, फौरन बाथ लेते हैं यानी कि नहाते हैं मर्द, ये नहीं का हौसला है जनाब। मजाल है कि कोई खातून जो है ब्यूटी पार्लर से अगर मुंह धोले, यानी कि समझ रहे ना आप। और जनाब साहबजादा साहब का तो मैसेज हो गया, और जनाब मुश कहती हैं आज उम्र रसीदा लोगों का शो नहीं है, ये किसने कह दिया मुश, ऐसी बात नहीं है भाई, देखें आप लोग भी तो शो सुनते हैं ना, हमारा हर शो सुन रहे होते हैं जिसमें सभी होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें हम एक ऐसा काम करते हैं कि एक पार्ट जो है यंगस्टर्स के लिए, जेंजीज के लिए, और एक पार्ट जो है हमारे तमाम लिसनर्स के लिए रख लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? हाँ जी, जी हाँ जी।

गाना देख रहा था, समझ नहीं है हैंडसम क्या मतलब, क्या लिखा है, लिखा है आ जाओ ओए आ जाओ यार आ जाओ। चलो इसी बात पर हम चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक के, जाने बैलो फड़ो। जैसा कि आपने कहा ना मिक्स मिक्स, एक ट्रैक जो है आप सबके लिए और एक जेंजीज के लिए, ये आप सबके लिए।

वेलकम बैक। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। ब्यूटीफुल ट्रैक, आदिफ असलम की आवाज को शामिल कर लिया हमने। और आगे बढ़ते हैं। लोग सुबह सुबह शीशा देखते हैं, उसके बाद दिन में कोई नुकसान हो जाए या कोई पनौती आ जाए तो कहते हैं कि पता नहीं किस सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। सलीम मेमन कह रहे हैं। सलीम मेमन भाई, आपके साथ ऐसा हुआ था।

0: अच्छा भाई, तो बात हम ये कर रहे थे कि वालिदैन और आपको क्या चीज जोड़ती है, बाउंड करती है, ये सबके लिए सवाल अब हो गया है, जैनजीज के लिए नहीं हुआ है। ठीक है जी, मुश्क ने कहा जरा चेंज करें, तो एक गाना वो और एक गाना ये है जी, ते है जी। अच्छा भाई साहब, ज्यादा का मैसेज आया, कह रहे हैं ताजमहल तुर्की के इंजीनियर्स ने तामीर किया था, इसी में एक पानी का तालाब था जिसके अंदर दिया जल रहा था, अंग्रेजों ने मालूम करने के लिए छेड़छाड़ की, दिया दोबारा जला ही नहीं। हाय हाय, अच्छा ताजमहल में। अच्छी, मैं मुझे इसके बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग साहबजादा साहब पता नहीं कि ताजमहल जो है वो तुर्की के इंजीनियरों ने बनाया था, मतलब मुझे हैरत हो रही है, उस जमाने में इंजीनियरिंग की डिग्री भी होती थी। गॉड डे भाई, खैर जो भी है, इस हवाले से मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। एजाज तनोली साहब कहते हैं भाई आपको और तमाम लिसनर्स को सलाम, और कहते हैं कि मैं मुश्क की बात से इत्तफाक करूंगा। भाई तो भाई आप दोनों के इत्तफाक जो है मिल गए, क्योंकि आप दोनों के इत्तफाक से मैंने भी इत्तफाक कर लिया, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। संजू आ गए और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आफियत की अनगिनत दुआएं, सलामत रहे, खुश आमदीद कहती हूं, मिजाज बखैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूं। एक डेडिकेशन है ओए अल्लाह जी, और डेडिकेट कीजिएगा रूहेवन और शहजादी तानिया को, डेडिकेट कर दीजिएगा। शुक्रन, पूरी कोशिश है इख्तिताम तक साथ रहूं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और बहुत ही काबिले एहतराम नौरीन बहना और शहजादी जरीन नूर के लिए टोकरा भर कर फूलों और दुआओं का गुलदस्ता पेश कर दें, माशाल्लाह जजाकल्ला, क्या बात है। और कहती है कि शादी के दूसरे ही दिन अचानक शौहर अपनी बीवी को मारने लगा, लोगों ने पूछा क्यों मार रहे हो भाई इस बेचारी को, शौहर ने कहा ये मुझे चाय में तावीज मिलाकर पिला रही है, मुझे अपने काबू में और मेरी माँ से मुझे दूर करना चाहती है। बीवी गुस्से में रोते हुए बोली वो तावीज नहीं है बल्कि टी बैग है, तो लिहाजा शादी करो तो किसी पढ़े लिखे से करो। मेरे टी बैग के हवाले से मैंने एक सवाल भी किया था, याद है आप लोगों को या नहीं याद, बताइएगा टी बैग के हवाले से मैंने क्या कहा था। मुझे उन लोगों के पास बैठना बेहद पसंद है जो हर चीज का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ देते हैं। वाह वाह वाह वाह वाह भाई, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह। और आज दूल्हे मियां भी आ गए हैं, यानी कि समी शेख, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप, सलाम टू गुफरान भाई एंड ऑल लिसनर, और कह रहे कि कोई गाना हो जाए जबरदस्त मलकू दा, तो क्या बात है, आई एम वेटिंग। तो प्रैक्टिस कर ली है तुमने शादी वादी की? गुफरान भाई मसरूफ इतने हुए हैं कि जिसकी हद नहीं, वरना उनकी जाने अब मुतवज्जो हो गए। मलकू का गाना सुनना चाह रहे हैं गुफरान भाई, समी साहब, मैंने बोला कोई प्रैक्टिस वगैरह की है डांस वांस की, होनी चाहिए वैसे समी साहब आपकी जानिब से, आजकल तो मतलब स्टेज पे आने से पहले दुल्हन डांस करती हुई आती है, आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी ऐसी। समी साहब क्या नाम है, गुफरान साहब आप क्या कहते हैं इस हवाले से, सही है ना, आप डांस करते हुए गए थे? कह रहे मैं नहीं किया, हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था। हाँ इनके दौर में नहीं होता था, आपका तो दौर भाई, यानी कि समझ रहे ना, बस दुआ की रिक्वेस्ट है यार, बस दुआ, ये बसों वाली दुआ कौन सी होती है, ये अगर आप बस हटा दें इसमें से तो दुआ की रिक्वेस्ट है, ये भी सही था, लेकिन ये बस दुआ की रिक्वेस्ट है। मतलब समझ में नहीं आया समी भाई, क्या बात है, सब ठीक है ना? उफरान भाई भी आ गए इसी हवाले से। जी
1: सर, उन्होंने आधी बात करी, आपको पूरी समझनी चाहिए।
0: जी जी जी,
1: उन्होंने क्या बात करी?
0: बस दुआ की दरख्वास्त।
1: बस दुआ बोला ना?
0: हाँ,
1: शादी वाली बस की दुआ।
0: अच्छा, शादी वाली बस की दुआ। कह रहे बहुत टेंशन में है भाई, बहुत टेंशन में आ गए। खैर इस तरह तो होता है टेंशन। वैसे इसको किस बात की?
1: शादी को लेके।
0: नहीं, शादी को लेकर दो टेंशनें होती हैं। आप वो कौन सी वाली है? पहली टेंशन तो हर एक को होती है, दूसरी टेंशन भी ज्यादातर को होती है। जी,
1: इनको किस चीज की टेंशन है कि दिन कम रह गए हैं, दिन बहुत ज्यादा हैं।
0: हाँ, बस ये बताइए मुश जी, कल आपने कुछ कहा था तो इसका जवाब ये है कि वाइफ से थोड़ा थोड़ा डरना पड़ता है। हम शोहर लोग बहुत मासूम भी हैं और मजलूम भी। सलीम मेमन साहब कह रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा क्यों डरना पड़ता है सलीम भाई? इन दोनों चीजों को हटा के बताएं। ए भाई नदीम भाई, पुराने जमाने के मैमार जो आजकल सिविल इंजीनियर कहलाते हैं, साहिबजादा साहब कह रहे हैं, कह रहे ताजमहल, मुझे इस बारे में नहीं पता, ये मैं ऑन एयर कह चुका हूं कि ताजमहल जो है टर्की के इंजीनियर्स ने बनाया था, और कहते हैं कि वहां पर एक दिया जल रहा था, तो वो दिया जो है ना, वो अंग्रेजों ने ना दिया देखा कि क्यों जल रहा है भाई, तो उन्होंने उस दिए को बुझा दिया। फिर जब दोबारा जलाया तो वो दिया जला नहीं। इस तरह की बातें मैंने कहीं सुनी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सुना हुआ है इस तरह। मैं जरा थोड़ा सा सोचने दे।
1: यही वजह थी उसके टेढ़े रहने की।
0: किसके? ताजमहल के?
1: ताजमहल ना थोड़ा सा टेढ़ा है।
0: नहीं, ताजमहल कहां से टेढ़ा? बताओ वो कौन सी बिल्डिंग है जो टेढ़ी है? दुनिया का अजूबों में शुमार होती थी किसी जमाने में।
1: मुझे नाम उसका नहीं
0: पता। नहीं, नाम बताएंगे आप, याद करें। आप लोगों को पता है नाम? अगर आप लोगों को पता है तो बताएं भाई, कौन सी बिल्डिंग है जो अब वैसे वो अजूबों में शुमार नहीं होती है, लेकिन पुराने जो अजूबे थे, सात अजूबे, उनमें उसका शुमार होता था कि एक बिल्डिंग है जो कि टेढ़ी बनी हुई है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि गिर जाएगी, मगर वो कायम और दायम है। तनोली साहब कह रहे हैं भाई आसिफ भाई के लिए कोई भी सॉन्ग डेडिकेट कर दे। कर देंगे जनाब। फिलहाल तो हम यार ये मलकू का गाना कह रहे हैं, मलकू का गाना हम अपनी पसंद के इनको डेडिकेट करेंगे।
1: नहीं, ये पहले डांस की वीडियो बना के भेजेंगे उसकी, तो फिर हम
0: वो आपको भेजेंगे ना, मुझे तो नहीं भेज सकते।
1: नहीं भेजते ना, लास्ट टाइम भी बोला था नहीं भेजते।
0: नहीं भेजी थी भाई। समी साहब, तैयारी की टेंशन? किस चीज की तैयारी की टेंशन? ये भी बता दीजिए, शादी की तैयारी की टेंशन है?
1: मेहंदियों में मेहंदी होती है ना, मेहंदी का फंक्शन होता है, तो उसमें वो चमचम गिराते हैं।
0: अच्छा, चमचम गिराते
1: हैं। खाने की तैयारी की टेंशन?
0: ओहो, वाह वाह वाह वाह वाह, आप लोग सब महसूस हो रहे हैं? नहीं हो रहे। एनीवे जनाब, आप लोगों लेकर जाएंगे एक ट्रैक की जाने। अब जाहिर है हमने आतिफ असलम चलाया, तो अब एक ट्रैक जो है नया चलाएंगे,
1: शादी की तरफ ले
0: जाना है। हाँ, तो सब उसके बाद फिर एक ट्रैक जो है हम पुराना वाला चलाएंगे। फिलहाल तो मैंने क्यूशी जैसी ही बनाई हुई थी, तो इस गाने के दरमियान जो है आपको और अच्छे अच्छे से गाने जो है वो इसके बाद सुनने को मिलेंगे। एल्लो फड़ो भाई, शमून इस्माइल का गाना है ये, और शमून इस्माइल वैसे मुझे बहुत पसंद है। और शमून इस्माइल का मुझे क्यों पसंद आया था, मैंने रुको उसका एक गाना भी निकाला हुआ है, वो वाला गाना सुना रहा हूं आपको जो मुझे बड़ा पसंद था, शमून इस्माइल जिससे मुझे पसंद आया। और यही ट्रैक जो है वो आप जितने भी जैनजीज हैं उनको डेडिकेट करते हैं, मुश्क को खसूसी तौर पर। एलो फड़ो तू मेरे

वेलकम बैक कहेंगी। और आई होप कि ये ट्रैक जो है सबको पसंद नहीं आया होगा, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा भाई, मैसेजेस आप क्या रहे हैं कि चाहे स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 बस। और जो है सवाल मैंने आपसे ये किया हुआ है, उस हवाले से हर कोई बता सकता है कि भाई अपने वालिदैन और आप में जो है वो बाउंडिंग के हवाले से कि आपको क्या चीज जोड़ती है, ये आपने मुझे बताना है। तो यार अम्मी अबू से प्यार नहीं है सबको, माँ बाप को तो प्यार होता ही है बच्चों से। अच्छा कुछ बच्चों को वैसे ही शिकायत भी होती है अम्मी अबू से, और वो शिकायत ये होती है दिल ही में होती है शिकायत कि बस वो फला भाई से या फला बहन से अम्मी अबू बहुत प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते, उतना नहीं करते, प्यार करते होंगे मगर उतना नहीं करते। तो खैर ये बाउंडिंग के जोड़ने के हवाले से जो है मैंने एक सवाल किया है, उसका जवाब अगर आप दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। और हाँ मैंने अभी वो जो बिल्डिंग जो एक टिल्ड बिल्डिंग है टेढ़ी बिल्डिंग है उसके हवाले से पूछा था, और साहबजादा साहब ने उसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है, और उन्होंने लिखा है पिज्जा टावर। पिज्जा टावर नहीं है वो, पिज्जा टावर है PISA पिज्जा टावर, और ये इटली में पिज्जा टावर है। और अगर इसकी डिटेल अगर आप चाहते हैं, ये मतलब सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, ये अजूबों में शुमार होता है। पुराने जितने भी अजायब थे सात अजूबे, उनमें पिज्जा टावर का अपना एक मकाम है। और अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी डिटेल भी बता सकता हूं। कि ये जो है ये कब कायम हुआ, कैसे कायम हुआ, और ये बिल्डिंग टेढ़ी कैसे हुई, सब बता सकता हूं। और आगे बढ़ते हैं जनाब, आपके मैसेजेस की जान है। सिविल इंजीनियर्स वाला इनका हो गया था और ये वाला मैसेज भी हो गया। एंड सलीम एवन कह रहे हैं, सुनो गुफरान भाई से पूछना है कि आपको वाइफ से डर लगता है? बहुत डर लगता है। सलीम एवन पूछ रहे हैं, गुफरान भाई आपको अपनी वाइफ से डर लगता है? वाइफ से डर लगता है आपको? कह रहे बहुत लगता है, जब वो मेकअप एन के बगैर होती है तो बहुत डर लगता है। अच्छा कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं कि वो मेकअप कर ले ना तब डर लगता है, बगैर मेकअप के बहुत हसीन लगती हैं, ऐसा है ही नहीं है, है ना? बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं, इसकी क्या वजह है? मैं तमाम खवातीन से पूछना चाहूंगा कि जो खवातीन जो हैं वो मेकअप कर लें तो अजीब सी लगती हैं, डर लगने लगता है उनसे, लेकिन अगर बगैर मेकअप की होती हैं तो बहुत हसीन लगती हैं, क्या वजह हो सकती है? हमारे आसिफ भाई मुल्ला निहारी वाले सुन रहे हैं, आसिफ भाई मुल्ला निहारी वाले वो सुन रहे हैं। गुफरान भाई रोटियां बड़ी ताजा ताजा बेहतरीन मिलती हैं मुझे, जब से आसिफ भाई सुनने लगे हैं रोटियां आनी भी चाहिए। गुफरान भाई कह रहे रोटियां आनी, जैसे जानू बर्गर आ गया था निहारी भी भाई ये आसिफ भाई हमारे जो है गुफरान भाई खाने पीने के बड़े शौकीन है, जानू बर्गर खा चुके हैं ये आपके बराबर में ना, जानू बर्गर अंडे वाला बर्गर भेजा था ना आपके लिए, हाँ, और कहते थे बहुत जबरदस्त था भाई। खैर जी, और आसिफ भाई आपको हम गाना भी डेडिकेट करेंगे अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, सुनते रहिए साथ रहिए। और नदीम भाई बाबू का मतलब क्या होता है? चाची मेरी पंजाबी है, प्यार से बाबू कहती हैं, तभी आपसे मतलब पूछ रही हूँ। एस गुल पूछ रही हूँ, एस गुल जैसे हम पश्तो में, नहीं पश्तो में तो नहीं मुझे पता इसका, लेकिन खैर बाबू जो है पंजाब साइड पर ये वैसे नाम ज्यादा मशहूर है, और जो लोग पढ़े लिखे और एक अच्छे मर्तबे पर फाइज जो लोग होते थे ना खानदान में, तो उनको बाबू कहते थे। तू तो बाबू है भाई, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी है, नोट शोट है,
پیار محبت سے بات کرتا ہے، مطلب عزت اور احترام والا جو نام ہے اس کو بابو کہا جاتا تھا، بابو جی، میرے بابو جی ہیں. تو یہ دوسرا بابو ہے، بابو مہنور کہتی ہے نا وہ. تو بابو جو ہے یہ ایک بڑا معتبر قسم کا نام ہے. وہ گانا سنا ہے، میرا بابو چھیل چھبیلا میں تو ناچوں گی، رونا لیلا کا گانا ہے. ویسے غفران بھائی، میرا بابو چھیل چھبیلا میں تو ناچوں گی رونا لیلا، یہ کوئی ریمکس میں یا اچھی بیٹ پر ہے، ذرا دیکھیے گا. ہم سنجو کو ڈیڈیکیٹ کریں گے کیونکہ آج وہ سن رہی ہیں، آئی ہیں. سنجو آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اور ہمارے ایوب لالا کہاں غائب ہو؟ لالا لا لا لا لا لا لا لا. کوئی نہ کوئی مہمان آگے ہوں گے لالا کے، اور سبا گل نے لالا کو ایک ٹریک بھی ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے کہا ہے، ہم ضرور کریں گے. تھینک یو ندیم بھائی، مطلب بتانے کے لیے ایس گل نے کہا ہے. اور ندیم بھائی، دیا پانی کے اندر جل رہا تھا، صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں. کیا بات کیا آپ نے یار، زبردست، پانی کے اندر دیا جل رہا تھا. یار اب تو اس کے بارے میں پڑھنا پڑے گا بھائی، کہ دیا تھا تاج محل میں اور وہ پانی کے اندر جل رہا تھا اور وہ بجھا دیا، تو اس کے بعد کیوں جلے گا بھائی. خیر یہ آپ نے بڑی زبردست بات بتائی ہے صاحبزادہ صاحب، اور اس کے حوالے سے میں اپنی بات کروں گا، ضرور ریسرچ کروں گا. اور سنجو کیا کہتی ہیں؟

अच्छा जनाब, अभी आपको लेकर जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानेब मलगू का गाना जनाब एलफड। सभी भाई, ये इसमें एक मुर्गा है और वो इधर उधर भाग रहा है, मलगू पकड़ने की कोशिश कर रहा है उसको। तो आपने इसकी शायरी जो है बड़े गौर से सुननी है।

시원해요. कुकर द मीडिया बहुत जबरदस्त ट्रैक हमने आप लोगों की समातों की नजर किया. सनी भाई खुश हो गए और गुफरान भाई सही कह रहे थे ताजमहल के मीनार के हवाले से कि एक तरफ झुका हुआ है और अगर वो कभी गिरा तो ताजमहल पर नहीं गिरेगा. साहबजादा साहब कह रहे हैं भाई आप हकीकत मानिए कि गुफरान भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप जो कह रहे होंगे वो भी बिल्कुल दुरुस्त होगा. लेकिन मैंने इस हवाले से झूठ नहीं कहेंगे जनाब कि पढ़ा नहीं है तो मैं आपकी बात पर 100% यकीन कर रहा हूं. लेकिन हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे भी और हो बाद में बताएंगे भी. अच्छा अब जो है इस मैसेज के बाद आगे बढ़ते हैं और जनाब रुहमान तानिया का सॉन्ग भूलिएगा नहीं. अरे नहीं भूलेंगे जनाब, डोंट वरी, अगला गाना वही चलाएंगे हम. मिर्जा साहब कहते पे ने नदीम भाई नदीम भाई 80 हले व्याह करना है तुसी सानू डराओ ना. भाई डरा नहीं रहे और बल्ले बल्ले जियो कुकड़ मीडिया क्या बात है मलकू की और तुसानी ते कल ही कुछ बोर होर ए लाला. अच्छा जी तुसानी ते गाली कुछ होर ए लाला क्या बात है भाई. और अलीमुद्दीन साहब क्या कह रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने मेरा मैसेज शामिल किया. हाँ अब आपका गाना भी चल जाएगा. Don't worry. अच्छा भाई समी के शुक्रिया का मैसेज आ गया है लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने. अच्छा भाई नदीम भाई आपके सवाल का जवाब है समद बाउंड. साहबजादा साहब वालिदैन के साथ जो बाउंडिंग होती है या उनको उनके साथ जो चीज आपको जोड़ती है वो समझ बाउंड है. चलो किसी ने जवाब तो दिया भाई. हमारी प्यारी शहजादी बहन आ गई है जरीन नूर कह रही है अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप. मेरे वालिद मोहतरम को संजू को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने प्यार भरा सलाम कहा है. इसके साथ ही जनाब अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानेब जो के शो के मूड का रुख ही चेंज कर देगा. इतना जबरदस्त गाना है और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं संजू की जानेब से तानिया हसन को और रुहमन को. एलो फड़ो जनाब.

वेलकम बैक आएंगे सुने हो आप सबको, ना तुमसे ज्यादा ना तुमसे कम चाहूं मैं। क्या ब्यूटीफुल ट्रैक है यार। ओके ठीक, और बहुत अरसे के बाद मैंने ये सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच संजू, बल्कि संजू नहीं कहेंगे, रूहे मैन। भाई एक गाना तो हमारी जानिब से भी बनना चाहिए, हमें इतना अच्छा गाना डेडिकेट हुआ मेरी पसंद का, तो हम भी अपनी पसंद का एक गाना डेडिकेट करेंगे अभी आप। मैसेजेस कर रहे हैं आपके एचआई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। और पिज्जा टावर के हवाले से आपको बात बता दी, इटली में ये होता है जो कि टेढ़ी बिल्डिंग है, ये भी एक देखें कुदरत का कैसा कमाल है, इसकी डिटेल किसी दिन बताऊंगा मैं आपको। और ताजमहल की डिटेल जो है वो हम साहबजादा से फिलहाल पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ताजमहल में एक दिया जल रहा था पानी के अंदर, यार ये देखो हैरत अंगेज बात है वैसे। लेकिन इस दिए के बारे में कुछ सुना हुआ है मुझे, ऐसा लग रहा है, पर रिकॉल कर रहा हूं अपनी मेमोरी को। सवाल मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि बताएं कि आपके माँ बाप और आपको जो है क्या चीज जोड़ती है बॉन्डिंग के हवाले से। किसी ने कुछ नहीं बताया, बोले पैसे जोड़ते हैं, खाना जोड़ता है, क्या जोड़ता है जरा बताइए। ठीक है जी, और जनाब जरीन नूर का मैसेज मैं पढ़ चुका हूं, समद बॉन्ड वाला मैसेज भी पढ़ चुका हूं, संजू कह रही है शुक्रन शुक्रन, मैं खुश। अभी आप देखिए गाना डेडिकेट करूंगा, अगर पसंद आ जाए तो फिर बता दीजिएगा। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों। अच्छा मैं आपको ना एक बड़ी मजेदार सी एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं और एक कहानी भी सुनाना चाहता हूं। एक पाकिस्तान में जगह है, उसका नाम है शमशाल वैली। आपको पता है इसके बारे में गुफरान भाई, या हमारे तमाम सुनने वालों को पता है इस हवाले से शमशाल वैली के? वैसे तो उसको शिमशाल

तो शिमशाल वैली है, बट ज्यादातर लोग उसको शमशाल वैली ही के नाम से, और शमशाल वैली के हवाले से अगर किसी को कुछ पता है तो मुझे जरूर बताएं, फिर मैं आपको एक बहुत ही मजेदार किस्म का वाकया बताऊंगा इस हवाले से, मतलब आपके सुनने के काबिल है वो वाकया।

अच्छा संजू, आपका एक मैसेज है, मुझे एक लफ्ज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, किस हवाले से मुमतजर हैं, जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं मतलब थोड़ा सा यानी कि समझ आएंगे ना, जहन दुरुस्त हो जाएगा। तो जनाब लाइट नहीं थी, क्यों देर से सुना, कोई भी सॉन्ग संजू के नाम कर दीजिएगा। जरीन नूर कह रही है, जरीन नूर आज आपकी और मेरी जानिब से, यानी कि समझ रही है ना। वैसे आप कहती हैं कि भाई मेरी जानिब से ही होना चाहिए, मेरा ही नाम होना चाहिए। अच्छा हाँ भाई, दिया जलाए, दिए के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है उसके हवाले से अगर मुझे साहबजादा साहब ने बताई तो गुड होगा, मैं भी बता दूंगा, और अगर वो नहीं बता सके तो फिर मैं रिकॉल मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आपको बाद में जरूर इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा। अभी जैसे पिसा टावर की बात हुई है, ये पिसा टावर जो है इटली में होता है और भूल चुका था ऑलमोस्ट, मैं मतलब किसी गोशे में था, लेकिन अचानक बातों बातों में जो है एक बिल्डिंग जो है वो टेढ़ी है बिल्कुल, उस हवाले से फौरन जेन में आ गया, कहां है, क्यों है, और इसकी तमाम डिटेल भी आ गई। अगले शो में जरूर आपको इस हवाले से मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको आपसे जो बात पूछी है शमशाल वैली के हवाले से, इस हवाले से अगर कोई कुछ बताना चाहे तो जरूर बताए कि ये क्या है, इसकी क्या खासियत है, कहां वाक़े है शमशाल वैली। तो इस हवाले से अगर आप लोगों को कुछ पता है तो बड़ी अच्छी बात, और अगर नहीं पता तो मैं आपको इस हवाले से जरूर बताऊंगा। जी बिल्कुल शमशाल, सही लिखा है आपने संजू। इसी बात पर संजू आपके इस मैसेज पर आपके लिए एक गाना है रोहेमन की जानिब से, एलो फड़ो।

वेलकम बैक। कह रही है रा करो प्यार की कोई बात। ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। और मैंने आपको कैसा लगा बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जाने बदीला के नहीं है। सलाम बहुत ही प्यारे भाई नदीम, आज मैं भी आ गई। जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो मेरी प्यारी सी बहन। आप का शो हमेशा की तरह लाजवाब। संजीदा आप ही को सलाम। और एक सॉन्ग है जी, जी है जी यार, अच्छा जी। और जनाब नदीम भाई, आप इन द लाइट मोड मेरे दोस्त इंटर करके अमेरिका गया था, 6 साल बाद वापस आया, मुझसे मिलने आया, दीवार पर एक कौवा बैठा था। मेरा दोस्त बोला व्हाट इज दैट, इज दैट अ ब्लैक पैरट। साहबजादा साहब कह रहे हैं, साहबजादा साहब आपने एक जोरदार किस्म का जो है चमाट मारना था। और बोलते याददाश्त वापिस आई भाई, बेटे याददाश्त वापिस आई। दोस्त है ना, तो दोस्त के साथ तो इस तरह का मजाक होता है। इस वजह से मैंने ये बदतमीजाना बात की है, बेतकल्लुफाना बात की है। अब एक बंदा गया है अमेरिका, 6 साल रह के रहा है, कौवे को देख रहा, देख के बोल रहा है कि ये काला काला तोता है भाई। हंसी आई है मुझे इस पर बहुत। वैसे उसका रिकॉर्ड तो लगाया होगा साहबजादा साहब आप लोगों ने, हैं जी ते हैं जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मोश कहती है वाओ हैंडसम लवली सॉन्ग, थैंक यू। एक गाना आपको डेडिकेट किया था बहुत पहले और आप अब कह रही हैं थैंक यू, या ये वाले गाने में गाए। अच्छा गाना पसंद आया होगा। चले जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो शमशाल वैली के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, कोई गाल नहीं की। फिलहाल हम आपको एक और गाने की जानिब लेके जा रहे हैं और ये डेडिकेशन है जनाब हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जही साहब की जानिब से आप सबको। और उसके साथ ही साथ इरफान मेमन, हमारी जितनी भी प्यारी सी बहनें मेमन कजन्स जो है उनकी, उनको सारा मेमन को, सलीम मेमन टॉम को भी ये ट्रैक डेडिकेट करते हैं, क्योंकि सज्जाद अली की आवाज है। एलो पढ़ो

वेलकम बैक। कीजिए जरा, अब आप की यहाँ पर जो है मौजूदगी का भरपूर तरीके से, गुफरान भाई की मौजूदगी का मैं फायदा उठा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आप लोगों की जानिब से फरमाइश आती है और हासे खोले ने तेरिया याद आने। नहीं भाई मजा नहीं आ रहा,

ECHO लिखा जो है ECHO वो कीजिए तो आपको पता चलेगा। खैर जी मैसेजेस आपके आ रहे हैं और मैं आपसे ये सही।

ये सही है। दरारा साउंड जरा चेक हो रहा है और इस वजह से मैं थोड़ा सा गुनगुना रहा था। आप ये ना समझिएगा कि कुछ गाया वाया जाएगा। अच्छा जनाब, आपकी मैसेजेस की जानिब चलते हैं। मुश्क कह रही हैं संजू के सॉन्ग पर दिल हलचल मच गई थी। आप क्या है भाई, दिल बस में करना जानते हैं। आई अल्लाह जी, मेरा बच्चा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब शो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह भाई वाह, पहले अच्छा नहीं लग रहा था क्या? और अदीला को भाई दिल की गहराइयों से सलाम भी कहा है। और अदीला आपकी मासूमियत पर कुर्बान। संजू कह रही है आप। तो मैंने तो भाई अब आप लोगों को मतलब एक मूड बन गया आप उनका भाई, सिर्फ एक ही गाने से ना तुमसे ज्यादा। ये गाना जब चलाया ना बस, तो बस वो एक रॉ चल पड़ी है और वही रॉ जो है वो आपकी समाधियों तक पहुंच रही है। मैसेजेस आपके आ रहे हैं और जो सवाल पूछा है उसके हवाले से किसी ने कोई दुरुस्त जवाब नहीं दिया हमारे साहबजादा साहब ने, फिर भी जो है वो कोशिश की और समद बॉन्ड जो है वो लगा दिया फिलहाल उस पर, इन दो रिश्तों पर, माँ बाप और आप को क्या चीज जोड़ती है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा भाई, हमारे एक बहुत ही प्यारे से दोस्त, इससे पहले आपने ये जो सुना था ट्रैक कह रही है रात, ये जिमी अत्रे साहब का ट्रैक, और ये बहुत ही प्यारे मेरे दोस्त हैं, लाहौर में रहते हैं और किसी जमाने में यहाँ कराची में भी थे। और अब आपको जो मैं ट्रैक सुना रहा हूँ, ये ट्रैक भी मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स। ये ग्रूस ट्रायोलॉजी, ग्रु ट्रायोलॉजी एक बैंड था और मोहसिन अल्लाह दित्ता साहब का, आपने जावेद अल्लाह दित्ता साहब का नाम सुना होगा, बहुत बड़े और बहुत जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर। उनके भाई जितने भी हैं वो उन्होंने भी बेतहाशा म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी खिदमात अंजाम दी, जिनमें कमर अल्लाह दित्ता साहब भी हैं। तो उन्हीं उसी फैमिली से मोहसिन अल्लाह दित्ता, वो उनकी भी बेतहाशा जो है ट्रैक्स आपने सुने होंगे। तो किसी जमाने में इन्होंने एक बैंड बनाया था जिसका नाम था ग्रु ट्रायोलॉजी, और इनके जो वोकलिस्ट थे, जो मतलब गाना गाते थे इनके बैंड में, उनका नाम था ग्लेन जॉन। अच्छा, अब ग्लेन जो हैं वो साहबजादे एक पाकिस्तान के बहुत ही नामवर शख्सियत के, एस बी जॉन साहब का नाम सुना

तो एस बी जॉन साहब के साहबजादे हैं ग्लैन, तो इनकी आवाज भी क्या जबरदस्त. आजकल यहां नहीं है, मुल्क से बाहर है. और ग्लैन का ये ट्रैक जो है मोहसिन अल्लाह दित्ता का, मुझे बहुत पसंद है. और ये मैं अपनी जानिब से नहीं बल्कि जरीन नूर की जानिब से डेडिकेट करता हूं संजू आपको. ब्यूटीफुल म्यूजिक मैलो. आपने पहले भी मेरे शोज में सुना होगा, बहुत पहले, बट इसकी अपनी एक बात है, मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद है.

वेलकम बैक। कैसा लगा गाना? अच्छा, मैं आप लोगों को इनके हवाले से एक और बात बताऊंगा, गुरु ट्रियोलॉजी के हवाले से, मोहसिन अलादिता साहब के हवाले से। लेकिन अभी चंद आपके मैसेजेस शो में शामिल कर लें। और यूसुफ भाई बाबोश से, यूसुफ भाई आपका मैसेज आ गया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कुछ देर के बाद जो है आपका मैं ये मैसेज शो में शामिल करूंगा। और आ गई है जिंदगी साथ, कह रही है वाओ कमाल का शो हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जरीन ने, जरीन नूर ने थैंक यू कहा है गाना चलाने की वजह से। अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती, कुछ लोग गाड़ी को बुरा भला कहते हैं, गाड़ी में कौन सी मखलूक की रूह होती है? लवली कह रहे हैं। देखिए, इस हवाले से चर्चा होगी थोड़ी सी, ठीक है ना। ये बड़ी अच्छी आपने निशानदेही की है, और मैं अपने किसी शो में इस हवाले से बात भी कर चुका हूं। और आपकी इस बात पर जो है ना, ये मैं पहले मार्क कर लूं, शो के आखिर में कहूंगा ये बात, क्योंकि इसमें एक मैसेज होगा। जिंदगी साथ है, कह रही है माशाल्लाह, अल्लाह दिलदार एवन, अल्लाह दिलदार मोहसिन अल्लाह दित्ता। चले, इसी की बात पर मैं आपको बताता हूं और कुछ सुनाता हूं, क्योंकि इन्होंने, गुफरान भाई ने कुछ एको एको भी कर दिया है। तो जिंदगी, क्योंकि हमेशा मेरी आवाज की फरमाइश करती हैं, तो आपको चंद लाइनें सुनाऊंगा और शायद मैं सही तरह गाना सकूं या सही तरह मुझे याद ना हो। मोहसिन अलादिता की एक कॉम्पोजिशन जो है, एक गाना था जो कि मुझे बेहद पसंद था। और उस वक्त ये किसी एक सिंगर के साथ इन्होंने गाना गाया था, और ये बहुत पुरानी बात है, म्यूजिक चैनल चार्ट की बात है। तो उस वक्त इनका ये गाना रिलीज हुआ था, उसके बाद पता नहीं वो गाना कहाँ, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो गाना मुझे मिला नहीं। तो उसकी चंद लाइनें आपको सुना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगी।

वेलकम बैक कहेंगे, ये थोड़ा सा याद था और वहां आपको सुनाया, मुझे बहुत पसंद था ये ट्रैक, क्योंकि इंसाफ नहीं कर सका इस ट्रैक के साथ, बहुत खूबसूरत गाया हुआ था ये सॉन्ग। मैं भी अक्सर सुनता हूँ, कहाँ सुनते हो भाई ये? अगर आपके पास ट्रैक है समी तो फौरन से पेशतर मुझे बताओ इसके हवाले से। प्यार में दिल को सताना, समी जरूर बताना मुझे गाने के बारे में। और संजू कह रही है माशाल्लाह माशाल्लाह रूहमन बहुत दिलकश गाया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पसंद तो रूहे मन, खुश किस्मत है मेरी जरीन, शुक्रन रूहे मन क्या कहूं, बेहतरीन सॉन्ग शायरी तो वाओ, रात के इस पहर जबरदस्त, तुझे पाने की प्यास पे ये कहा है इन्होंने। खैर जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, लेके जाएंगे आपको एक और बहुत जबरदस्त से ट्रैक की जानिब। अच्छा, ये ट्रैक भी बड़ा खासम खास ट्रैक है और अब्बास अली खान, हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ को उनका एक गाना बहुत पसंद था, उन्होंने फरमाइश भी की थी, हमने चलाया भी था, तो ये ट्रैक अब्बास अली खान ने गाया है, लेकिन उनके साथ साथ एक और सिंगर भी हैं जिन्होंने इनके साथ मिलकर ये गाया है और उनका नाम है नादे अली। और नादे अली के बाद में बारे में आपको बता दूं कि काविश बैंड जो है उनके जो सरबराह हैं, वोकलिस्ट जो हैं काविश बैंड के, उनका नाम है जाफर साहब और जाफर के ये भाई हैं नादे अली, यानी कि नैयरा नूर साहिबा के साहबजादे। बहुत प्यारा ट्रैक है और अदीला की जानिब से डेडिकेट करेंगे जनाब ये एलो फड़ो।

वेलकम बैक, मेरा सारा थू अब्बास अली खान एंड नादे अली। अच्छा जनाब, ये हमने अदीला की जानिब से तो डेडिकेट किया था और मैं अपनी जानिब से हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ को जरूर डेडिकेट करूंगा। वो बहुत मेरी प्यारी सी बहन है, आज गायब है, हो सकता है सो रही हूँ या हो सकता है मेहमान आए हों। और संजू को बहुत पसंद आया भाई, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी कह रही है अरे अल्लाह नजर ना लगे ना कर जिंदगी। वैसे आज रात काफी दिनों के बाद रात के शो में आई है जिंदगी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब ने जो है वो शुक्रिया अदा किया है। अच्छा अच्छा, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा भाई, मैंने जो सवाल किया था, क्योंकि उस पर किसी किस्म का कोई आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया, मां सिवाय हमारे प्यारे से साहबजादा की जानिब से आया और उसके अलावा किसी ने कोई रिस्पांस अच्छा नहीं दिया। सो दैट्स व्हाई मैं इसको स्पॉइल नहीं करना चाह रहा, मैं किसी और शो में दोबारा ये सवाल करूंगा और पूछूंगा। लेकिन एक बड़ी जबरदस्ती लवली ब्रदर ने एक बात की है कि अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है तो कुछ लोग गाड़ी को बुरा वाला कहते हैं। देखिए बात दरअसल ये है कि इस हवाले से बहुत सारी बातें मैं कर चुका हूं। हमारी जिंदगी में ना, ये लवली ब्रदर आपके लिए भी है और जितने भी सुनने वाले हैं जिनके पास गाड़ी है या मोटर बाइक है, तो उन सबके लिए तो ये है ही है। लेकिन अगर आपके पास कोई कन्विंस नहीं भी है तो भी ये बात गौर तलब है आप लोगों के लिए। और गौर तलब इस तरीके से है कि अक्सर हम जो पाकिस्तान में बेहंगम किस्म का ट्रैफिक है, कोई कानून नहीं है, अपनी मर्जी से गाड़ियां चल रही हैं, अपनी मर्जी से बाइक चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, डंपर चल रहे हैं, रिक्शा, एवरीथिंग, रोड्स पर बेहंगम किस्म की ट्रैफिक है और किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। हां अलबत्ता अपनी परवाह जरूर है, अपने आप को बचाकर हर कोई जो है वो गाड़ी भी ड्राइव कर रहा होता है, बाइक भी ड्राइव कर रहा होता है, ट्रक भी ड्राइव कर रहा होता है। मैंने ट्रक की तो बात नहीं करूंगा, वो तो किसी का ख्याल नहीं रखते, अपना ख्याल नहीं रखते, वो दूसरों को कुचल देते हैं। तो बात जो इस हवाले से करनी है कि हमारी जिंदगियों में बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, ख्याल रखते हैं, मगर उसके बावजूद जो है उनके साथ कुछ ना कुछ मामलात बिगड़ रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं यार मैंने तो किसी के लिए कोई बुरा ही नहीं किया, मैंने किसी के लिए बुरा सोचा नहीं है, मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो क्यों हो रहा होता है ना, ये हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। होता ये है कि मिसाल के तौर पर एक बंदे की गाड़ी जो है रोड के बीच में खराब हो गई, उसकी वजह से तमाम ट्रैफिक रुक गई। अच्छा वो साहब क्या करेंगे कि गाड़ी अगर खराब हो गई है तो धक्का लगाकर उसको साइड पर नहीं करेंगे, बस जहां खराब हो गई है वहीं खड़ा हूं भाई मैं तो, ठीक है ना, मेरे बाप की रोड है। और लोग बेचारे जो हैं वो उनकी ट्रैफिक उनकी वजह से जैम हो रही है, मुश्किल से लोग इधर उधर से निकल रहे हैं। एक तो ना तो कोई उनकी मदद कर रहा है और ना ही वो ढीठपना दिखा रहे हैं कि खुद कोशिश कर रहे हैं इस हवाले से। तो होता ये कि जो जा रहे होते हैं ना बाइक पर गाड़ी में, तकलीफ तो उनको हो रही होती है और वो उस तकलीफ में दिल से बद्दुआ टाइप की गालियां भी निकल रही होती हैं, बद्दुआएं भी निकल रही हैं, मनुस मारा देख पता नहीं ये कौन है यार, गाड़ी बीच में खड़ी की हुई है, साइड पर नहीं कर सकता था, ये आपस में हम उनको बद्दुआएं दे रहे हैं भरपूर तरीके से। तो अब गलती तो किसी ना किसी तरीके से है ना भाई, गाड़ी खराब होगी साइड पर लगा लो। तो वो जो बद्दुआएं हम खामखा में ले रहे होते हैं ना, वो हमारे बहुत सारे ऐसे मामलात खराब कर रही होती हैं, जो कि जिस तरह के मैं यहां पर बोलता हूं कि भाई दुआ कीजिए सबके लिए, सबके लिए दुआ कीजिए, ठीक है ना, किसकी दुआ लग जाए पता नहीं है। इसी तरह हजारों लोग जब बद्दुआ कर रहे होते हैं तो पता नहीं किसी की लग ही जाए, तो खुदा ना खास अल्लाह ना करे कि किसी को किसी की बद्दुआ लग जाए। लेकिन ऐसे हमें काम ही नहीं करने चाहिए जिससे हम किसी की बद्दुआ समेटें, ऐसे काम करने चाहिए कि दुआएं समेटें। तो एक तो ये वजह है भैया, और हम में एक बस ये तो मैंने एक छोटी सी आपको मिसाल दी है, और अगर इस पर मैं तफसील के साथ जो है बताना शुरू करूंगा तो वक्त जो है पुर करके उड़ जाएगा, वैसे ही पुर करके उड़ गया है। और हमारे यूसुफ भाई का एक मैसेज आया था शो के आगाज में ही, और उनके एक
बहुत ही प्यारे से दोस्त जो हैं उनकी शादी हो रही थी, तो उसके बेटे की हो रही थी या जो भी, उन्होंने बताया था सोमरो साहब हैं, कोई कुद्दूस सोमरो हैं, अकदूस सोमरो हैं, तो ये उन्होंने बताया कि भाई उनकी शादी होने वाली थी मगर उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह बेहतर जानता है किस वजह से हुआ होगा, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात थी। तो इस वजह से शो के आगाज में मैंने इस हवाले से बात नहीं की कि मूड जो है वो भी अजीब सा हो जाता है फिर किसी के यहाँ ऐसी खबर पढ़ने से, जो है फिर वो शो का टेम्पो जो है वो आगे पीछे हो जाता है। सो दैट्स वाई मैं चाह रहा था कि मैं आखिर में ही ये खबर पढ़ूं। और उन्होंने मगफरत की दुआ के लिए दरख्वास्त की है, तो हमारे यूसुफ भाई पापोश वाले जो हैं उनके कद्दूस सोमरो साहब जिनकी शादी थी, जिनका इंतकाल हुआ है, उनके अजीज कह लें, दोस्त कह लें, तो उनके लिए आप लोग सब जरूर दुआ कीजिएगा, चाहे दिल में करें दुआ। दुआ करने में कोई चार्जेस नहीं लगते, यकीन मानिए, लेकिन ये होता है कि सवाब भी मिलता है, चार्जेस तो नहीं लगते बट सवाब मिल जाता है। अल्लाह ताला को अगर आपकी दुआ पसंद आ जाए तो अल्लाह ताला आपको नवाजता भी, उसका अजर भी अता फरमाता है। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को जो है सब्र जमील अता फरमाए। इसके साथ ही साथ एक बात और भी कहना चाहूंगा कि मेरी वाइफ के एक कजन हैं, उनकी भी हालिया परसों दरसों उनकी भी डेथ हो गई थी, तो उनके लिए भी मगफरत की दुआ जरूर कीजिएगा। कमाल नाम था उनका, कमाल भाई की डेथ हो गई थी, तो उनकी भी मगफरत के लिए जरूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए, उनके गुनाहों को माफ फरमाए और लवाहिकीन को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए। तो जनाब इसके साथ ही अब आप लोगों से चाहनी है इजाजत, और जाते जाते एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक जो है वो आप लोगों की समातों की नजर करूंगा। एक माहौल बना हुआ है, उस माहौल को मैं चाहूंगा कि कायमो दायम रखें और उसी हिसाब से ही टेम्पो आगे चलता रहे। अब आप लोगों से मुलाकात इंशाल्लाह ताला होगी जनाब कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: कॉफी स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिब याकान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.